0: हर हर मन बुठा, हर हर मन बुठा।
1: सलो महला पहला, नानक फिक्के बोले हैं तन मन फिक्का हो, फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगे सतिया मो तुका फिक्के पाए।

0: ले सजाए महला पहला।
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, हथ सठ तीरथ जे नावे उतरे नाही मैं। जिन पट अंदर बाहर कुदड़ ते भले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह। दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खा, दीवान एको कलम एका हमा तुमा हमें। दीवान एको कलम एका हमा तुमा में, दले लेखा पीर छुटे नान का जीव। तेल पौड़ी आपे ही करना की गल आपे ही तारी है, देख किता अपना कर कच्ची पाकी सारी है जो आया।

0: एक नहीं दात आपस ते जो पाया, एक नहीं दात आपस ते जो पाया, नानक साकरमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा,
1: एक नहीं चात्री जित पौ खसम न जाए, नानक सेवक काडी जे सेती खसम समाए, पौड़ी नानक अंत न जा पड़ी, अर्थात है पाड़ावा आप पे।

ज्ञान का तना जापनी हरता के पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए बा एक ना गली जंजीरिया एक तू तेरे बसियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलो हर्ट्ज़ ते। तंहिंखां सवाइ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप ऐं DD फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। अॼु विस्पत आहे जून महीने जी 25 तारीख़। हिन वक़्तु भारत में सुबुह जा 6:30 थी चुकिया आहिनि। असांजे प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। प्रोग्राम जा तफ़सील कुझु हिंदी आहिनि। थोरी देर में तव्हां भगत कंवर राम खे ॿुधंदा। तंहिंखां पोइ 6:25 ते तबसरो पेश कयो वेंदो। 6:40 ते

भगत बदंदा जैन में भगत किशन ए साथियों के बदंदा प्रोग्राम के आखिर में खास खास खबरों नशर क्यों वेंदू इला तो हुई असांजे प्रोग्राम की तफसील हियर अचो तो बुधूं भगत कंवर राम जी मिठड़ी आवाज में कलाम।

न रुगो संदन पंजे करियर पर किरोड़ी शाहरुन जे मुस्तकबिल के भी मुतासिर कंदा हुन जोर दिनो त अवामी खिदमत जो असल आजमाइश ईमानदारी ए वाबस्तगी सा हकीकी हालतुन के संभालण में आहे। प्रधानमंत्री नौजवान सिविल सर्वेंट्स ते जोर दिनो त हू मजबूत मकसद जिद्दत ए शहरी मरकजी हुक्मरानी जे जज्बे सा कौम जे तामीर लाए पाण के समर्पित करन। हुन खेन याद दियारियो त हर सरकारी फाइल जे पोयां इंसानी जिंदगी जो असर मौजूद हूंदो आहे। हुन चयो त हर फाइल बेशुमार नागरिकुन जे उमीदन ए जिंदगी जी नुमाइंदगी करे थो। नागरिक देवो भव जे मंत्र ते जोर डींदे हुन ऑफिसरन के अपील कई त हू हर फैसले जे मरकज में नागरिकुन के रखन ए हुक्मरान के हमदर्द जवाबदेही ए सभिनी के शामिल कंदर बणाइन। हुन इहो भी चयो त वॾनि तरक़ियाती ललकारुन खे अलॻि अलॻि शूबनि में हल नथो करे सघजे तंहिं करे मुख़्तलिफ़ खातनि जे विच कॉर्डिनेशन ज़रूरी आहे। सॼे हुकूमत जे गॾियल तरीक़ेकार ते ज़ोर ॾींदे प्रधानमंत्री चयो त वॾा तरक़ियाती मसइला अलॻि अलॻि कम करण सां हल नथा थी सघनि। हुन वधीक चयो त बामाना ऐं पाएदार नतीजनि लाइ मुख़्तलिफ़ खातनि जे विच में मौसर राबते ऐं तआवुन जी ज़रूरत आहे। विकसित भारत 2047 जे विज़न खे उजागर कंदे प्रधानमंत्रीअ चयो त ईंदड़ ॾहाकनि दौरान हर पॉलिसी ऐं इंतिज़ामी फ़ैसिलो तरक़ी याफ़्ता भारत जे तामीर में हिसो वठण घुर्जे। हुन ज़ोर ॾिनो त अॼु भारत जूं तरजीहूं जीअं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, पैदावार में वाधारो ऐं नौजवाननि लाइ मौका ॾियण आहे। प्रधानमंत्री गुज़िरियल ॾहाके दौरान हुक्मरानी में आयल तब्दीलीअ जो ज़िक्र कंदे चयो त प्रशासन हाणे अमल मर्कज़ी मॉडल खां नतीजा मर्कज़ी तरीक़े ॾांहुं तब्दील थी चुकियो आहे। हुन डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं टेक्नोलॉजी जे वधंदड़ किरदार जो हवालो ॾिनो। डेटा ते ॿधल हुक्मरानी जी अहमियत ते ज़ोर ॾींदे प्रधानमंत्री चयो त डेटा खे सिर्फ़ अंगन अखरनि तौर न ॾिठो वञे पर उन खे लखे माण्हुनि जी ज़िंदगीनि, मसइलनि ऐं उमीदनि जो अकास समझियो वञे। हुन अफ़सरनि खे हिदायत कई त हू बाक़ाइदगी सां जाइज़ो वठनि त पॉलिसियूं ज़मीन ते केतिरो असराइती नमूने सां नतीजा ॾेई रहियूं आहिनि। प्रधानमंत्री क़ौम जे तामीर में औरतुनि जे वधंदड़ किरदार खे बि साराहियो ऐं चयो त मौजूदा बैच में 40% खां वधीक अफ़सरूं औरतूं आहिनि। हुन नौजवान अफ़सरनि खे अपील कई त हू पंहिंजे क़ौमी ख़िदमत में किरदार जो जाइज़ो वठनि ऐं उहिदे माना पर हासिल कयल हक़ीक़ी नतीजतनि मां इत्मीनान हासिल करनि। हुन यकीन ज़ाहिर कयो त संदन तवानाई, सलाहियत ऐं लगन भारत जे तरक़ी जे सफ़र खे नवनि बुलंदियुनि ताईं पुॼाइण में अहम किरदार अदा कंदा। हुन मुलाक़ात दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल डॉ जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री जा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के मिश्रा, ॿिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी शशिकांत दास, कैबिनेट सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन, सेक्रेटरी डीओपीटी सुश्री रचना शाह, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जा डायरेक्टर श्री श्री राम तरणी कांती ऐं ॿिया सीनियर अफ़सर पिण मौजूद हुआ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश से विझी सकंदा आहियो।

हींअर पेश आहे प्रोग्राम भगत। इन प्रोग्राम जे तहत अॼु तव्हां भगत किशन ऐं साथियुनि खे ॿुधंदा।

0: जी मेरे साहब
1: बिया तो तो घनी आशिक बुधा
0: पर
1: जड़ी तरह लैला ए मजनू चाहिए
0: जड़ी जड़ा हीर है राजू
1: जड़ी तरह शीरी ए फरियाद
0: जड़ी तरह लैला ए मजनू
1: अड़ी तरह ससी ए पुनल के दरवेशन जेतरो गायो आहे
0: हां
1: ओतरो कैखे भी न गायो थन सिंध जो शाह लतीफ
0: हिटाई घोट
1: ससी के सिक जानी करे
0: ऐं पुनल खे परमात्मा जानी करे
1: ऐं ॾाढो गायो आहे ससीअ खां जेॾी महिल पुनल जुदा थी वियो आहे
0: ससी जा ॾेर अची करे हुनजे पुनल खे खणी विया आहिनि
1: उन वक़्त में सुबुह जो ससी उथे थी रोए थी सतियूं साड़ियूं मिड़ी आहियूं
0: छो त सुबुह

हाथ जोड़े करे ये थी चवे।

0: साहब
1: साईं भले साहब
0: सर्तियूं दौर पाए अची करे बाह खां झलेसि थियूं
1: सॾु करे चवनि थियूं ससी
0: अड़ी पुनल तुंहिंजो वञणो हुयो सो वियो
1: हाणे तूं छा कंदीअ
0: चए थी मां हाणे हितां थी हलंदासीं।

0: घोरी जान जतन ताओ
1: साई भगत साहब
2: तने ससी रोए छी
1: आ
2: सरत्र के छी थी दिसो
1: दिसो
2: ओही उठन जा पेर था वने
1: ये मुजा देर था वने।

0: साहब है?
1: जी साईं।
0: शाह साहब ससुए के बारे में बुधाए तो ससु रोई करे ए रोड़े में चे थी भेण मां हण जाण होयसि।

भगत किशन ऐं साथियुनि खे ॿुधी रहिया हुया। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहिनि न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 3,000 करोड़ रूपयनि जी मालियतनि वारी 4 मुख्य बुनियादी ढांचनि जे कमनि जो जाइज़ो वरितो। 4 ढांचनि में रोड, बिजली, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐं मेट्रो रेल शूबनि सां लगापियल आहिनि। मर्कज़ी तिजारत ऐं हुनर वज़ीर श्री पीयूष गोयल अॼु लंडन ॾांहुं 3 ॾींहनि जी रस्मी यात्रा ते रवाना थींदो। परडे॒ही मामलनि जे वज़ीर श्री एस जयशंकर पंहिंजे ॾखण कोरियन सानी चो यून सां सियोल में मुलाक़ात कई ऐं वधंदड़ आलमी ललकारनि मंझि मज़बूत भारत ॾखण कोरिया लाॻापन जो सॾु ॾिनो। ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ ज़रिए आरज़ी सामुंडी लंघ खे खोलण जो ऐलान कयो आहे। यूरोप में ज़बरदस्त लू हली रही आहे। आलमी सिहत इदारे हिन खे सिहत एमरजेंसी करे चयो आहे। ऐं ICC औरतुनि जे T20 वर्ल्ड कप में अॼु मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए तहत भारत जो मुक़ाबलो बांग्लादेश सां थींदो।

0: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा आयो हिंदर असांजे प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी रहो आए वरी तवा सा गडजानी थींदी छंछर सुबह जो 6:30 वगे सुभाणे
1: तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 वॻे तेसीं ताईं ॾींदा मोकल सलाईगढ़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री

0: पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपोलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability, faster response mechanisms and stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. On this day in 1975, the emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had

अभी आप सुन रहे थे दुजेंद्र गीत। कलाकारा थी संचेता रॉय। इसके साथ ही संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 7:30 हुए हैं। ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गीतोभरी। गीतोभरी गुड मॉर्निंग में मैं हूं आज एक खूबसूरत ताजी और सुहानी सुबह के साथ आपका दोस्त नवीन सक्सेना। सुबह के पहले चाय के चुस्की के साथ जब खिड़की से ठंडी हवा आती है तो दिल बस एक ही चीज मांगता है, मोहब्बत और सुकून। और जब मोहब्बत की बात होती है तो हमारे पुराने गीतों से बेहतर भला और क्या हो सकता है। आज का सफर ये सफर पूरा होगा प्यार तकरार और यादों के नाम। तो सुबह के इस मखमली धूप में खोलते हैं सुरों का जादू। आज का पहला गीत सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की फिल्म, फिल्म का नाम है कटे पतंग। और इस गाने को सुनते ही सुबह की सुस्ती जो है वो आपके गायब हो जाएगी। अनिल बख्शी साहब के लिखे इस नकमे को आदि बर्मन ने अपने संगीत से सुझाया है और आवाज दी है किशोर कुमार ने। और किसी ने क्या खूब कहा है, खूब ये कहा है कि इश्क की दुकानें खोलो, इश्क की दुकानें खोलो, फूलों का व्यापार करो। इश्क अगर खता है तो ये खता कई बार करो।

अगर प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है और सचिन किशोरदा की आवाज अगर सुबह सुबह हो तो वैसे ही प्यार में सिर्फ और सिर्फ दीवानगी होती है, हालांकि थोड़ी उलझन और थोड़ी नादानी भी होती है। और अब छोटी मोटी बातों को दिल से निकालते हुए बेहतरीन गीत मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और वो एक ऐसा क्लासिक गीत है जिसे सुनकर आपकी थोड़ी सी प्यार में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही रूहानी आवाज है, हसर जयपुरी साहब के सीधे दिल में उतरती है। शंकर जयकिशन का लाजवाब संगीत है, सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में और साथ में बहुत सुंदर। आइए सुनते हैं कामचोर फिल्म का गीत।

गीतों भरे गुड मॉर्निंग अपने दोस्त नवीन सक्सेना के साथ, बहुत ही खूबसूरत गीतों के गुलदस्ते के साथ हमने शुरुआत की थी आपके इस खूबसूरत खूबसूरत सुबह की। कोशिश करते हैं वो तमाम गीत आपको सुनने जो आपके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ले, जो दिन भर ताजगी महसूस कराए, और जो भी आपसे मिले तो ये आपसे पूछे आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की वजह क्या है। तो सीधे ही छूटते हुए बोलेगा, मुस्कुराने की वजह है कि आज मैंने अपने मनपसंद गीत सुने हैं, वो गीत जो शायद कहीं खो गए थे। बहरहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत चलते चलते मैं अब आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, किशोर कुमार की आवाज में और साथियों की आवाज है, साथ में फिल्म राजपूत का ये गीत है। उम्मीद है इस गीत के साथ आप अपनी तमाम यादों को आज सजाएंगे और मेरे संग संग हिस्से भी गुनगुनाएंगे। बहरहाल अपने दोस्त नवीन को अब दे इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमेरिका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों के लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। स्क्रीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण पूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अनंता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
4: राजूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
5: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
4: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी आकाशवाणी समाचार, धैर्य।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मूवमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के जुमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे इस समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई दोजोरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा

0: पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरूद्व वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांतिवार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। घोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 डॉलर चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. Another news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
3: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TV Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital

0: in airspace. DGCA initiates action as crew ATC failed to report incident, headlines the Tribune. The Statesman headlines, India-US edge towards trade truce as Jameson Greer concludes Delhi visit. RBI breather for Tata Sons, but asset size hurdle stares, reports the Financial Express. Adding, the new frameworks drops the access to public funds criterion that had been one of the factors pushing Tata Sons into the upper layer classification. The Hindu in its editorial, Razor's Edge, informs that high heat and low rainfall is threatening agricultural produce. The southwest monsoon deficit nationwide has increased from 35% to 43%, and extreme heat has been reducing farm labor productivity. The ideal sustainable strategies are to switch from rain-centric to water-centric organizations, reduce dependence on water-intensive crops, and improve resilience. And finally, a large asteroid called 1997 NC1 will be visible to stargazers using a small telescope or large binoculars on 27th June, the European Space Agency announced. The asteroid will be speeding along at nearly 9 kilometers a second, posing no threat to Earth as any chance of an impact has been ruled out, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Shakun.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lippu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपु लेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाखी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। वेनेजुएला में आज सुबह 7.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफास के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखाधड़ी की शिकायतों का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी से सख्ती से निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 रियासतों में सड़क बिजली सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में 4 बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी में इजाफा करना, सनअती तरक्की को आगे बढ़ाना और आवामी फलाह बहबूद वगैरह शामिल हैं। वजीर आजम ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में तखीर की वजह से लागत में इजाफा होगा और शहरी बरवक फवायद से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वजारतों और रियासती सरकारों को हिदायत दी कि वो एक मोड मिशन में जेर इल्तवा मामला हल करें और उनकी बरवक तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मनसूबों की निगरानी और और बेहतर मंसूबाबंदी के लिए पीएम गतिशील

0: शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौसी इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। जनरल मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और बेदारी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोशिशों में एनसीसी कैडेट्स और माई भारत रजाकारों को शामिल करने की भी तजवीज रखी। वजीर आजम ने कानून नाफिज़ करने वाली एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दरमियान मजबूत तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखा देने के मामलों पर तेजी से काम करने के लिए ई0 FIR मैकेनिज्म के निफाज और अवामी बेदारी मुहिम की जरूरत पर भी जोर दिया। नई दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून साल 1975 को पामाल किया गया था। यह हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
0: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाब को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके नतीजे में आमला ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफात को दफा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आजादी, एक जगह जमा होने और आने जाने की आजादी समेत उन हकूक को खत्म कर दिया गया था जिसकी जमानत दफा 19 के तहत दी गई थी। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने के हकूक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिज कर दी गई थी। यहां तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था जो प्रेस की आजादी की तहफुज का एक कानूनी इदारा है। इसी मुद्दत के दौरान आईनी तरमीम के जरिए इमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने से रोक दिया गया था और वजीर आजम लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जांच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। सकाफत की वजारत आज नई दिल्ली में चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम करेंगे जो इमरजेंसी के निफाज के बाद से 50 साल मुकम्मल होने का एक मौका है। इस मौके पर संविधान हत्या दिवस के साथ जमहूरियत हमेशा कायम रहे से मुतालिक एक नुमाइश के अलावा संविधान हत्या दिवस पर एक मुख्तसर फिल्म की नुमाइश की जाएगी। सखावत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर।
1: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत के तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होने की तवक्को है। पिथौरागढ़ जिले में थारचूला इंतजामिया के मुताबिक भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल तिब्बत में तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तजारती अफसर और धारचूला सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट SDM आशीष जोशी ने कहा कि पहले मरहले के तहत 26 तजारती पास जारी किए गए हैं जिनमें 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। गंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लिपुलेख दर्रे के नजदीक वाके गांव के गोदामों में पहले ही अपनी अशिया जमा कर ली हैं। इंतजामिया को 103 से ज्यादा ताजिरों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। दूसरे मरहले के तहत दीगर 25 ताजिरों को इजाजत दी जाएगी। ताजिरों की मदद के लिए इंतजामिया ने लिपुलेख दर्रे तक अशिया की नकलो हमल की गरज से नाबे ढांग के नजदीक खच्चरों और घोड़ों का भी इंतजाम किया गया है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाबीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: भारत चीन सरहदी तजारत का आगाज पहले 1991 में हुआ था लेकिन 2020 में कोविड-19 वबा के मद्देनजर इसे मुअत्तल कर दिया गया था। आकाशवाणी न्यूज देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू आज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मुल्क की पहली हब एंड स्पोक बैनुल अक्वामी फजाई खिदमात का आगाज करेंगे। वो कल काशी पहुंचे थे और उन्होंने हवाई अड्डे पर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी मुआयना किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत अपनी ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत आज से हरियाणा

के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स वुजराए तवानाई की मीटिंग की मेजबानी करेगा। दो रोजा मीटिंग में 3 अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक रसाई और मुशावरत, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तिरा शामिल हैं। ब्रिक्स के तमाम रुकन ममालिक के तवानाई के वुजरा और सीनियर अफसरान अहम शोबों में तआवुन को मजबूत करने के लिए इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत का मौजू लचकदारी, इख्तिरा, तआवुन और पायदारी का क्याम है। देही तरक्की का महकमा आज नई दिल्ली में एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगा, जो देही तरक्की में मस्नूई जहानत के इस्तेमाल पर मरकूज होगी। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि मस्कूरा एक रोजा तकरीब भारत के देही इलाकों की तरक्याती जरूरियात को जदीद तरीन तकनीकी इख्तिरात से मरबूत करने का एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म होगी। नीति आयोग, द इंडिया एआई मिशन, सरकर्दा सनती मुशावरती इदारे और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जैसे कलीदी शराकतदार देही तरक्की को फरोग देने में मस्नूई जहानत के इम्कान पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका के एक विफाखी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को इंतखाबात से मुतालिक उनके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज्यादातर हिस्सों को नाफिज करने से मुस्तकिल तौर पर रोक दिया है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत के दस्तावेजी सबूत की शर्त की तजवीज भी शामिल है। बोस्टन में अमरीकी जिला अदालत की जज डेनिस कैस्पर का यह फैसला दरअसल उनके एक साल पहले जारी करदा अबूरी हुक्म इम्तनाई को मुस्तकिल पाबंदी में तब्दील करता है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में इस्लाहात के लिए जनाब ट्रंप की कई कोशिशों को आरजी तौर पर रोक दिया था। जज कैस्पर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आईन इंतखाबात को मजबूत करने का इख्तियार रियासतों और कांग्रेस को देता है, न कि सदर को, और उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ट्रंप की शराइत इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी करती हैं। वेनेजुएला में याराकाई रियासत के युमारे कस्बे में आज सुबह 7.5 शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक इससे पहले वेनेजुएला में सैन फेलिप में 7.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलजले से वेनेजुएला के कराकस में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में जलजले की शिद्दत काफी महसूस की गई, जिससे जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में शहरियों के तहफ्फुज़ के निजाम को अलर्ट कर दिया गया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ये दौरा भारत और बरतानिया के दरमियान जामी इक्तसादी तजारती समझौते सीईटीए और अगले महीने की 15 तारीख को कंपेनियन डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन डीसीसी के निफाज से कबल हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल बरतानिया के कारोबार और तजारत के वजीर पीटर कायली के साथ आला सतही बाहमी मीटिंग करेंगे। मुजाकरात के दौरान तजारती मुआहदे के निफाज के लिए तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पेशिन्यान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक्किदा पार्लियामानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हम मनसब की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान कर्मजोशी और कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरक अज़्म का इरादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम
नेट रन रेट की वजह से चौथे मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद टी20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नेदरलैंड्स को 95 रन से हराया था।

0: अभी आप सुन रहे थे राग जौनपुरी में ख्याल। कलाकार थे रत्नम सान्याल। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरगंगाब संपन्न होता है। अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे फिल्म खिलौना के कुछ चुनिंदा गीत, और दिन में 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, जिसमें ईमेल पर आधारित आपके फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आज चिकित्सा सेवाओं का दायरा केवल दवाओं के निर्माण और वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संसाधनों का कुशल प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल तकनीक और रोगी केंद्रित सेवाएं भी शामिल हैं। इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर संगीता जी मगन जी को। संगीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रशिक्षक, लेखिका और सलाहकार हैं, और आपको फार्मेसी, प्रबंधन शिक्षा, नेतृत्व विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव आपके पास है। आज आप हमारे साथ फार्मेसी और प्रबंधन विज्ञान के विकसित होते संबंधों, स्वास्थ्य सेवा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे, हम आपसे जानकारियां लेंगे। संगीता जी, जब भी कभी हम बाजार जाते हैं कोई दवाई लेने के लिए, दवा लेने के लिए, तो अक्सर हम फार्मासिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट, इन 2-3 शब्दों से रूबरू होते हैं, तो क्या इनमें कोई समानता है या कोई अंतर है?
2: पहले तो थैंक यू सो मच, मेरे लिए ही ऑनर है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के बीच में। बात करते हैं फार्मासिस्ट की, केमिस्ट की और ड्रगिस्ट की। तो बेसिकली आज हम इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, इनमें कुछ खास डिफरेंस है भी और कई जगहों पे एक सा ही लगता है। तो हर केमिस्ट शॉप पे जहाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड सामान, दवाइयाँ, जिसको ड्रगिस्ट बोलेंगे, ये चीजें मिलती हैं। फार्मासिस्ट बेसिकली वो हैं जो एक क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में पूरी एक सर्टिफाइड स्टडी करी है, तो उनको हम एक क्वालिफाइड पर्सन समझते हैं जो ये ड्रग्स को या दवाइयों को डिस्पेंस करने के योग्य हैं। तो जब हम केमिस्ट कहते हैं तो वो केमिकल से ज्यादा रिलेटेड स्टडी है। ड्रगिस्ट कहते हैं उनको जहाँ पे मेडिसिन सोल्ड किए जाते हैं। सो इन सबकी स्टडी करके, जो पूरी अच्छे से उनकी पढ़ाई करके, क्वालिफिकेशन लेकर वहां बैठकर जिसको बेचने का हक है दवाइयों को, उसको फार्मासिस्ट कहते हैं।
1: बहुत अच्छी जानकारी। और ये जो दवा उद्योग है, जो कंपनीज है, इनमें और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट साइंस के बीच में क्या संबंध है?
2: देखिए, दवाइयों का काम है हील करना, ट्रीटमेंट करना। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आज एक फार्मेसी जो है या फार्मासिस्ट जो है, कुछ साल पहले, जैसे मैं कहूंगी कि जब मैंने एक फार्मेसी पढ़ा था, मैं 1986 की बात कर रही हूँ, तो जब हमने पढ़ा था तो फार्मासिस्ट का काम था दवाइयां देना। तो अब जो है, मैनेजमेंट के बिना एक फार्मासिस्ट सिर्फ फार्मासिस्ट ही बनकर रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी आने वाले बच्चे हैं जो फार्मेसी

0: रहे हैं वो एक स्टेप ऊपर बढ़े, क्योंकि इसमें अब इतना इवोल्यूशन हो चुका है, इतने सारे नए रोल्स आ चुके हैं, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ दवाइयां देने का काम नहीं करना है। तो उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैनेजमेंट स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: तो मैनेजमेंट जो स्किल है वो क्यों जरूरी है?
0: मैनेजमेंट स्किल का मतलब है आप लोगों से क्या बात करते हैं, कैसे अपने प्रोफेशन को चलाते हैं और कैसे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम एक सोचें कि एक केमिस्ट या फार्मेसी शॉप है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका रोल सिर्फ दवाई देना तो नहीं है, उसका रोल है कि वो अपने वेंडर्स के साथ कैसे बात करेगा, सप्लाई चेन कैसे मैनेजमेंट करेगा, अपनी टीम को कैसे लीड करेगा। तो मैनेजमेंट उन सब चीजों को सिखाता है, अकाउंटेंसी भी सिखाता है उनको, उनको लीडरशिप भी सिखाता है, उनको टीम स्किल्स भी सिखाता है, उनको ये भी सिखाता है कि मेरी दवाइयों की स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, मेरी दवाइयां किस तरह से रखी जानी चाहिए ताकि इजी एक्सेस हो और हर समय अवेलेबल हो, शॉर्टेज ना हो। तो ये सब चीजें जो है मैनेजमेंट के थ्रू ही हम सीख सकते हैं।
1: यानी कि मैनेजमेंट की भूमिका एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसके बिना हम कह सकते हैं कि अगर किसी अस्पताल में, किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में अगर फार्मासिस्ट है, अगर उसको मैनेजमेंट नहीं पता है या फिर नहीं कर सकता है, कम स्किल्ड का है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है,
0: बहुत सी परेशानी हो सकती है। बिकॉज हमारे को ये सोचना है कि ये क्रिटिकल दवाइयां हैं, इसकी मेरे को कितनी जरूरत पड़ती है और इसका मेरे पास में कितना स्टोरेज होना चाहिए।
1: और खासकर इसमें तो जो डॉक्टर्स जो दवाइयां लिखते हैं उनको जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है वो फार्मासिस्ट
0: ही है। देखिए, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ये दोनों पार्टनर्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम। आज जो सिस्टम है वो सिर्फ हेल्थ सिस्टम नहीं है, सर्विसेज नहीं है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज है। तो हम कहते हैं कि हर रोल जो प्ले हो रहा है एक हॉस्पिटल के अंदर वो किसी का ज्यादा और कम नहीं है। सबसे ज्यादा जो इन टच में आते हैं वो या तो नर्सेज आती हैं जो इन पेशेंट्स हैं, और जो आउट पेशेंट्स हैं उनके लिए फार्मासिस्ट आता है।
1: अगर नर्स की बात की तो नर्स को भी एक फार्मेसी का ज्ञान होना जरूरी है?
0: बिल्कुल जरूरी है, लेकिन होता नहीं है। उनको दवाइयां देना आता है, लेकिन उनको दवाइयों का डोसेज का स्टडी और जो ड्रग इंटरेक्शन का स्टडी है वो नहीं होता है। तो सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज को लेकर आते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये सब पार्टनर्स हैं। ये टीम ऐसी है कि एक की गलती से भी डिस्पेंसिंग एरर हो गया, उनको देने का एरर हो गया, तो डॉक्टर की पूरा काम जो है वो मिल हो गया,
1: फेल हो जाता है।
0: तो ये सब पार्टनर्स हैं, तो तभी वो सिस्टम जो है अच्छा स्ट्रांग बन सकता है।
1: हम ये कह सकते हैं कि सभी एक दूसरे के प्रति जो कॉम्प्लीमेंट्री है,
0: बिल्कुल।
1: तो जो अस्पतालों में या जो केमिस्ट के पास या फार्मेसियों में जो एक इन्वेंट्री होती है, जो भंडारण होते हैं, स्टोर होता है, और जो एक सप्लाई चेन जो होता है, जो प्रबंधन किया जाता है, उसमें रोगियों के यानी कि पेशेंट के देखभाल पर किस प्रकार का असर करता है, किस प्रकार प्रभावी होता है?
0: देखिए, बहुत सी ऐसे दवाइयां हैं जो हमारी प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर उनको किसी को फ्रिज में रखना है, किसी को रेफ्रिजरेटर में रखना है, किसी को सिर्फ एक कूल डार्क प्लेस पे रखना है, तो वो अलग अलग चीजें हैं, ये फार्मासिस्ट का ही काम है। कितनी दवाइयां मेरे हॉस्पिटल में यूज होंगी उसकी प्लानिंग भी एक फार्मासिस्ट
1: की है,
0: इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो सब फार्मासिस्ट ही कर सकता है। बिकॉज डॉक्टर तो ये नहीं बता सकते हैं कि इतने पेशेंट्स हैं इतनी दवाई रखो, फार्मासिस्ट ये बता सकता है कि इस दवाई के मेरे पास में ये चार तरह के मेडिसिन अवेलेबल हैं, और वो ही डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि ये चार हमारे पास में अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो इसमें से हम लिख सकते हैं। तो ये सभी का रोल रहता है उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए।
1: जी जी, तो अस्पताल मेडिकल टीम और दवा उत्पादक और कहना चाहिए कि फार्मासिस्ट केमिस्ट में एक बेहतर तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
0: बिल्कुल। देखिए, एक हॉस्पिटल में जब आप एंटर करते हैं, आज एक रोगी सिर्फ नहीं जाता है, उसके साथ उसकी फैमिली भी जाती है, ठीक है। एक रोगी एंटर करता है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो सबसे पहले कौन मिलता है उसको? एक गार्ड। अगर वो गुस्से से, बदतमीजी से, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बोलता है, तो वहीं पे इम्प्रेशन हॉस्पिटल का खराब हो जाता है। उसके बाद आते हैं लिफ्ट पे, उसके बाद आते हैं ओपीडी में, रिसेप्शनिस्ट है, ये सभी जो है वो भी एक पार्ट है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पेरिफरी के ऊपर बैठे हैं बाहर की साइड पे। उसके बाद जब अंदर की टीम की हम बात करते हैं, तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, और इन्हीं का रोल है मेजरली उस पेशेंट को सेटिस्फाई करने का। देखिए, हमने आज साइंस इतनी एडवांस कर चुकी है, लेकिन हम अमर तो नहीं है, हम सबका कुछ ना कुछ एंड है, लेकिन दवाइयों से हम ट्रीटमेंट करते हैं, फिर भी करते हैं, और जो उम्मीद हमें चाहिए, जो कंपैशन, जो एम्पैथी हमें चाहिए, वो पूरी टीम मिलकर ही दे सकती है।
1: बिल्कुल, जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेकर, डॉक्टर ने दवाई लिखी और छोड़ दिया, उससे कोई बात नहीं होती है, लेकिन उसी बात को अच्छी तरह से फार्मासिस्ट समझाता है, केमिस्ट एंट्रोनिस्ट समझाता है,
0: बिल्कुल
1: उन्हें संतुष्ट कर सकता है कि डॉक्टर ने क्या कहा और आपको दवाई किस प्रकार से लेनी।
0: देखिए, वो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम जो है वो एक फार्मासिस्ट का है।

0: हॉस्पिटल के बाहर ही मैंने बहुत वजह से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, हम फार्मेसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम उसी हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड्स देखते हैं जो केमिस्ट के लगे हैं 70% ऑफ ऑन मेडिसिन। तो हम असली दवाइयां इस हॉस्पिटल की फार्मेसी से क्यों लें, हमें जो 70% ऑफ पे बाहर मिल रही है। तो केमिस्ट और जो फार्मासिस्ट वहां क्वालिफाइड बैठा है उसको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है कि हमसे दवाई क्यों लें।
1: यानी कि ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा
0: है, ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है,
1: इस प्रकार से ट्रस्ट बिल्ड करना है।
0: ट्रस्ट बिल्ड करना है।
1: मन में प्रश्न उठ रहा है कि जो एम्पैथी एम्पैथी और ट्रस्ट इन सब की बात करें, आज जमाना है नई तकनीक का, एआई का और टेलीमेडिसिन युग का है। कुछ ही चंद घंटों में आपको दवाइयां हाजिर हो जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं दवाइयां, आपको उसका समाधान मिल जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो बदलाव हो रहा है रोगी पर किस प्रकार का असर हो रहा है, या कह सकते हैं कि जो मानवीय जो संवेदनाएं हैं, आत्मीयता है, वो कम हो रही है, ऐसा आपको नहीं लगता है? और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं?
0: देखिए, मुझे क्या लगता है, आज का जो पेशेंट है ना वो बहुत इन्फॉर्म्ड है। आप चार्ट के ऊपर डाल दीजिए अपने थोड़े से सिम्टम्स, वो आपको आपकी बीमारी बता देगा। तो क्या डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है हमें? गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से एआई कितना भी डेवलप कर ले, जब तक एक ह्यूमन कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो काम जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। हमने दवाई ली, हमारा ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन हीलिंग प्रोसेस के लिए हमें ह्यूमन कनेक्टिविटी की जरूरत है। और वही जो हीलिंग है आती है बिकॉज लोगों में एम्पैथी है, कंपैशन है, बात करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, वो आपको एआई नहीं दे सकता।
1: बिल्कुल। दवाइयां केमिस्ट तक पहुंचती हैं, जो दुकानों तक पहुंचती हैं, उनकी जानकारी एक एमआर देता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी भूमिका बड़ी भूमिका होती है। आप इसे किस प्रकार देखती हैं?
0: देखिए, जो मेडिकल रेप्स हैं यूजुअली वो भी फार्मासिस्ट ही होते हैं। अच्छी जो कंपनीज हैं वो हमेशा फार्मेसी ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही उठाती हैं मेडिकल रेप्स के लिए, बिकॉज उनको एक्सपर्टीज पता है। डॉक्टर उसमें कुछ भी पूछे उनकी नॉलेज बिल्कुल अप टू डेट है और उन्हें पूरा के पूरा उस ड्रग के बारे में सब कुछ पता है, तो वो ऑलरेडी उनके पास में एक्सपर्टीज है, तो वो एक फार्मासिस्ट ही होते हैं यूजुअली। अच्छी कंपनीज जो है वो फार्मेसी ग्रेजुएट्स को या एम फार्म पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही उठाते हैं। इसीलिए आज हम मैनेजमेंट के साथ में जोड़ रहे हैं इसको कि अगर हमने फार्मेसी मैनेजमेंट सीख लिया है, एक अलग से कोर्स एमबीए करा है, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज और हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ दवाइयां डिस्पेंस नहीं करनी है, हमारे पास में और बड़े रोल्स आ जाते हैं जो एक हॉस्पिटल में निभाए जाते हैं।
1: सुनीता जी, अभी हमें जो सुन रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फायदा होगा और कई लोग सोच भी रहे होंगे कि इस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, श्रोता सोच रहे होंगे, आप उनको क्या सलाह देंगे कि फार्मेसी के क्षेत्र में जाने के लिए किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए और आगे इसका क्या भविष्य है?
0: तो भविष्य हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रोल्स आ चुके हैं एक हॉस्पिटल के अंदर ही। पहले सिर्फ फार्मासिस्ट जो था अपनी फार्मेसी शॉप तक लिमिटेड था, अब वो क्लिनिकल डिसीजंस के अंदर भी आ चुके हैं। तो क्लिनिकल ये जो फार्मेसी है वो एक पूरा का पूरा, वो भी डॉक्टर्स के जैसे पूरे राउंड्स ले। तो इसलिए जो रोल्स हमारे पास में और उभर कर आ रहे हैं आजकल के बच्चों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो और बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ उनको दे सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री फार्मेसी में भी जा सकते हैं, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। उनके पास में ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो नए निकल कर आ रहे हैं फार्मेसी की स्टडी से, क्योंकि हर सिचुएशन जो है एक्सपैंड हो रही है। जैसे मैंने कहा हेल्थ केयर सिस्टम है, तो इस केयर सिस्टम के अंदर बहुत से नए अपॉर्चुनिटीज हम फार्मासिस्ट के लिए निकल कर आ रहे हैं।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मेसी का कोर्स है उसके साथ साथ में जो मैनेजमेंट है वो भी साथ साथ चलता है।
0: बिल्कुल।
1: और दोनों का साथ साथ होना जरूरी है।
0: बिल्कुल। देखिए, जो स्टूडेंट्स आज एमबीए करने के लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि एमबीए का मतलब बिजनेस को मैनेज करना है। वो बिजनेस फार्मेसी का हो सकता है, वो बिजनेस हॉस्पिटल का हो सकता है, वो बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो इसलिए एमबीए करने का मतलब है या मैनेजमेंट स्टडी करने का मतलब है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रहे हैं।
1: सुनीता जी, अब चलते चलते क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, तो कई बार हम सुनते हैं फार्माकोलॉजी, ये क्या है?
0: फार्माकोलॉजी का मतलब है दवाइयों की और डिजीजेस की स्टडी। किस डिजीज के लिए कौन सी दवाई जरूरी है, किस डोज में जरूरी है, इन सब चीजों की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं।
1: तो क्या ये फार्मासिस्ट से बिल्कुल ही अलग है?
0: नहीं, ये फार्मेसी के अंदर का ही एक कोर्स है।
1: अच्छा।
0: फार्मेसी का मतलब सिर्फ एक फार्मेसी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो बहुत सी स्टडी कर एक फार्मासिस्ट बनता है। तो ये हम ना सोचें कि वो स्टडी नहीं करके आए, उनकी बहुत सी एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं।

0: और भी ज्यादा आत्मीयता, संवेदनशीलता और पेशेंट के साथ में जो रिलेशन है वो ज्यादा मजबूत हो सकता है, अच्छा हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जब हम फार्मेसी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ फार्मेसी की पढ़ाई करके आए हैं, जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम बाकी सब चीजें भी अंडरस्टैंड करते हैं। हम उसमें बहुत से आजकल ऐसे मॉड्यूल्स भी डाले जाते हैं जिसको हम पीपल्स स्किल्स कहते हैं, लोगों से कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए, उन सब चीजों की स्टडी भी करते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है।
0: तो श्रोता मित्रों, फार्मेसी और प्रबंधन विज्ञान समन्वय स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सुलभ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य में भी ये साझेदारी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख आधारशिला बनी रहेगी और इसमें और भी इनोवेशन होते रहेंगे और भी डेवलपमेंट होते रहेंगे। सविता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपने साझा की इस विषय पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: और इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:30 होने को है और ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाने का।

0: है उसे उन्होंने बहुत ही बरक्स कैरेक्टर निभाया था, दैट फिल्म वॉज कसूर।
1: और आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन की भी जयंती है। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी जवानी के दिनों में वे सैनिक थे, बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण वे ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े। तलत महमूद और लता मंगेशकर ने उन्होंने कई यादगार गजलें गवाई, जिनमें आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे जैसे गीत भी शामिल हैं। मदन मोहन 1950, 1960 और 1970 के दशक में बॉलीवुड फिल्म संगीत के ख्याति प्राप्त निर्देशक थे।
0: नाउ वी आर विशिंग अ हैप्पी बर्थडे टू करिश्मा कपूर, एंड ऑफ कोर्स शी डजंट नो नीड एनी इंट्रोडक्शन। कपूर खानदान की यू कैन से एक रेवोल्यूशनरी उन्होंने स्टेप उठाया था, बिकॉज यूजली कपूर खानदान की जो फीमेल्स होती हैं दे डोंट एक्ट वंस दे आर मैरिड, अगर पहले करें तो दे हैव टू गिव अप देयर फिल्मी करियर। बट करिश्मा कपूर एंड हर सिस्टर करीना कपूर उन्होंने प्रथा थोड़ी, एंड ऑफकोर्स शी इज वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस ऑफ द 90s। शी फ्रीक्वेंटली प्लेड वेरी अर्बन एंड स्टाइलिश लीड्स इन हर फिल्म्स एंड वॉज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ द कपूर फैमिली टू परस्यू एन एक्टिंग करियर, ब्रेकिंग अ डेकेड्स ओल्ड फैमिली टैबू। रेसिपिएंट ऑफ सेवरल एक्रेज इंक्लूडिंग अ नेशनल फिल्म अवार्ड एंड 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स। एज आई हैड मेंशन दैट शी हैड वन द नेशनल फिल्म अवार्ड और वो फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुकेश और सायरा को दीजिए अब कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न कर लीजिए।
0: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड, नमस्कार।
2: अभी आप सुने थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशे की जाएंगी। ये आकाशवाणी है, हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीवी के खात्मे और साइबर धोखाधेही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। आज उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने एमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लीपू लेक दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासिस जारी किए गए हैं। वेनेजुएला में 8.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया जिससे कई इमारतें मुनहरी हो गई। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त दिफाज के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफार्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत पेश शर्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखाधेही की शिकायतों का भी जायजा लिया। जहां मोदी ने एआई पर मबनी टीवी के खात्मे और साइबर धोखाधेही से सख्ती से निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद को याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली। 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफिशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनियों और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था जिसमें उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके नतीजे में आमला ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफात को वहां

महसूस किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलजले से वेनेजुएला के काराकास में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में जलजले की शिद्दत काफी महसूस की गई, जिससे जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में शहरियों के तहफ्फुज़ के निजाम को अलर्ट कर दिया गया है। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कॉमर्स और सनअत की वजारत ने कहा कि ये दौरा भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तजारती समझौते और अगले महीने की 15 तारीख को कंपेनियन डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के निफाज से कबल हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक़िदा पार्लियामानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। ख्वातीन की आईसीसी टी20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रूपये मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। आज उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। वेनेजुएला में आज सुबह 7.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में ख्वातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशियात जारी है। पेशे खिदमत है अकवाल जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा।
1: हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हु का शुमार दुनिया की उन अजीम हस्तियों में होता है जिन्होंने न सिर्फ शुजात और बहादुरी के मैदान में नुमाया किरदार अदा किया बल्कि अदल व इंसाफ की भी बहुत सी ऐसी मिसालें पेश की जिन्होंने समाजी मसावात की एक नई तारीख रकम की। आज भी आपके अखवाल एक सालेह मुआशरे की तश्कील में कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। यहां हम चंद ऐसे अखवाल पेश कर रहे हैं जिनसे उनकी अजमत और दानिशमंदी का अंदाजा होता है, जो हमारे समाज के लिए निहायत अहम हैं और एक रोशन दलील हैं। एक मर्तबा आपने फरमाया, दुनिया उसको यतीम समझती है जिसके मां बाप नहीं होते, मगर मैं उसको यतीम समझता हूं जिसके अच्छे दोस्त ना हो। एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम अच्छा करो और जमाना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुम्हें अच्छा समझे। एक मरतबा आपने इरशाद फरमाया, इंसान दुख नहीं देते, इंसानों से वास्ता और उम्मीदें दुख देती हैं। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे या तो दूर से देख रहे हो या गुरूर से देख रहे हो। एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, दुनियादार की सोहबत इख्तियार ना करो, अगर तुम तंग दस्त हो जाओगे तो ये तुम्हें छोड़ देंगे और अगर मालदार हो जाओगे तो तुमसे ये हसद करने लगेंगे। जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीजें देखने लगें तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। आपका एक मशहूर कौल कुछ इस तरह है, अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम किसी मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम सोचो कुछ देर के लिए ही सही तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता तो मुश्किलात पर मुश्तमिल होता है। माशियात के हिसाब से आपका बहुत मशहूर कौल है, जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिस्क का कोई रास्ता न निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत करो। एक मर्तबा आपने फरमाया, मैं अपने बड़ों का एहतराम इसलिए करता हूं कि उनके सवाब यानी कि उनकी नेकियां मुझसे ज्यादा हैं, और अपने छोटों का एहतराम इसलिए करता हूं कि उनके गुनाह

0: सलाम और मरसिया पेश कर रहे थे तस्वीर अहमद और हमनवा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। वाकयात करबला, ये फीचर सुनिए, इसका पहला हिस्सा हम आपकी खिदमत में इस वक्त पेश कर रहे हैं। तहरी जनाब मेहदी नजमी की
1: पारित हुआ, लेकिन जब यह काफिला करारे लहर फरात खैबर हो रहा था तो तीखो शहर की फौजें आने लगी, जिन्होंने खान हुसैन को दरिया से हटाने पर इसरार किया।

पर मेरी वाणियों के फैलने लगे, अर्ध फौज पर फौज जाने लगी। सात मुहर्रम से पानी की बंद कर दिया गया और दो मुस्तम की आंधियां चलने लगी।

मादा एक शोर का मस्क छा गया, बच्चे बड़ा में सिंधे सितमदार आ गया। बोला अरे रिपोर्ट से ताकि किसी जिंदा है रंगी लक्ष्य।

0: कलाम जिन्हें साथ जल गया, दिल पर जरा सी चोट लगी तो मचल गया। बातिल को एक इनाद है हक़ रसूल से, अच्छा था होना सुलह का जाने रसूल से।
1: हमारा किया सिपाही सिकंदर ने एक बार अब्बास।

निकला हरम सरा से हसन का वो कुल अजार, चेहरे से नूरे है बरे करार आश्कार। ये उम्र थी के कद से भी बाला था राहवार, अब्बास ने फरश दिखाया बचत वकार। जिस पर किया सलाम के पैकी राम ने, आए दोनों पाओ फरस्ती रकाब में।

0: कर सदा हुसैन ने थामा दिलो जिगर, बारे अलम तोड़ती शब्बीर की कमर। बोले कहां से लाऊं चरागे नजर को मैं, अब्बास तुमको ढूंढने जाऊं किधर को मैं।
1: दरिया की शाह करतने अब्बास ले गए, दिल्ली खराशे दी गई अलमास ले गए। एक और दागे सीने एहसास ले गए, मस्ती गए जरी में घुटी प्यास ले गई।
0: मातम घर था जश्न में थे अहले सर उधर, बच्चे थे साजा रहे पथो जफर उधर। नाम बांटता था हर को अमर उधर, रोते थे देख देख के हजरत इधर उधर। वो था कि बस हुसैन बहुत रो भाई को, कोई जमा हो और तो भेजो लड़ाई को। अब मरने की गजब के नजर सुए फौज शाम, कांटों ये गैस थे कि उगलने लगी हुसाम। कि अर्थ हाथ जोड़ के ऐ कबले अनाम, सुनते हैं आप लश्कर आदा के ये कलाम। हो अब तो देश खाता है हंगामे जंग है, मौला बस अब तो हौसला सब्र बंद है।

0: में सारी बिगड़ गई।
1: इस्लाम का वकार दिवाला किए हुए, जिसमें अजी फिराज है हमला किए हुए, जैसे वकार में तेज चलाते हुए चले, और ने सितम को रन में भगाते हुए चले। लेकिन सनाने इतनी अनस तय करे दगा, था इस निहाल दस्त के पीछे छुपा हुआ। बर्फी लगाई आर से कातिल ने पुष्ट कर, पहलू में चाक हो गया मजलूम का जिगर। आवाज दी पिसरने सहे मस्तकैन को, हम सूरत नबी ने पुकारा हुसैन को।

या सिपाही मिलने सवा दिया, सरकार ने हुल मिला ने दिया शाह को जवाब। मावक लगा तो बाद शही मशकैन ने, कर्रा के आसमान को देखा हुसैन ने।

आसन नहीं कहे, सड़क निभरी है मेरी नक्शा नहीं कहे, नहीं मेरा ये सीने नहीं कहे, मेरे सामने तुम्हारे है बेटा नबी कहे, वो इस पर

सदाकत फिर सदाकत है बनावट फिर बनावट है फतेह पाते हैं मर कर भी रहे।

एक कंपेनियन डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के लिए ऑपरेशनल रोड मैप का भी जायजा लेंगे। इनका कहना है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार और पेशेवर अफराद की ज्यादा मोबिलिटी की हिमायत करेगा। कॉमर्स की वजारत ने कहा है कि ये दौरा आलमी कारोबार और सरमायाकारों के साथ माशी वाबस्तगी को मुस्तहकम करने के भारत के अजम को जाहिर करता है और 2030 तक भारत और बरतानिया के दरमियान बाहमी तजारत में 120 अरब अमरीकी डॉलर के हसूल के मुश्तरक मकसद को आगे बढ़ाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लीपू लेख दर्रे के रास्ते 26 भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल चीनी इलाके तिब्बत में दाखिल हो सकता है, जो कि 6 साल के वक्फे के बाद सरहदी तिजारत की बहाली का मौका होगा। तिजारती अफसर और धारचूला सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट SDM आशीष जोशी ने कहा कि 26 तिजारती पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। गुंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम्स ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लीपू लेक दर्रे के नजदीक वाकई गांवों के गोदामों में पहले ही अपनी अशिया जमा कर ली हैं। इंतजामिया को 103 से ज्यादा ताजिरों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और जल्द ही 25 ताजिरों के दूसरे दस्ते के लिए तजारती पास जारी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ताजिरों की मदद के लिए इंतजामिया ने लीपू लेक दर्रे तक अशिया की नकलो हमल की गरज से खच्चरों और घोड़ों के लिए नावी धांग के नजदीक एक जगह का तायुन किया है, जो कि तकरीबन 600 मीटर के फासले पर वाकई है। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने एमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थी। 1975 को आज ही के दिन उस वक्त सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी एमरजेंसी नाफिज की थी। इस एमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था, जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत और जवाब को नुकसान पहुंचाया था। इसके नतीजे में आमला ने मुकम्मल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफुजात को दफा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आजादी, एक जगह जमा होने और आने जाने की आजादी समेत उन हकूक को खत्म कर दिया गया था जिसकी जमानत दफा 19 के तहत दी गई थी। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने के हकूक से भी महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिज कर दी गई थी, यहां तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था, जो प्रेस की आजादी की तहफ्फुज का एक कानूनी इदारा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक़िला पार्लियामानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हमनसब की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई। वजीर आजम मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसी जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरक अजम का इरादा किया। इन शोबों में तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित शामिल हैं। यहां मोदी ने कहा कि वो भारत आर्मेनिया ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए जनाब पाशिनियान के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। बैन अलाक्वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि वह अमरीका के साथ ईरान के इब्तदाई अनुवाहिदे के तहत ईरान में मुआयने की कार्रवाइयां अंजाम देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियाई हथियार रखने या बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फीफा आलमी कप में ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको और मराकश आज अपने अपने मुतल्लिका मैच जीतकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गए हैं। खास खबरें एक बार फिर सुनिए।
वेनेजुएला में एक के बाद एक 7.5 और 7.2 की शिद्दत के शदीद जल्जले महसूस किए गए, जिसमें 32 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए।

हथियार बदन पर सजते हैं मनमोहन पुत्र मोहम्मद के, हथियार बदन पर सजते हैं मनमोहन पुत्र मोहम्मद के, हथियार बदन पर सजते हैं मनमोहन पुत्र मोहम्मद।

0: सामने भी आप समाप्त कर रहे थे सो सलाम मर्सिया और नोहा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम तारीख साज, आज का मौजू है हजरत अली।
1: हजरत अली का नज़्म अब्दुल मुत्तलिब तक वही है जो हजरत मोहम्मद का है। अब्दुल मुत्तलिब के दो बेटे अबू तालिब और अब्दुल्ला हुए। अब्दुल्ला के फर्जंद हजरत मोहम्मद और अबू तालिब के फर्जंद हजरत अली हैं। इस तरह हजरत अली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 30 आमुल फेर में 13 रजब को जुमे के दिन मक्का में पैदा हुए। वालिदा का नाम फातिमा था जो असद बिन हाशिम की बेटी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली और मां ने हैदर और असद नाम रखा। हजरत मोहम्मद ने हजरत अली को अबुल हसन और अबू तराब की कुनियत से मुखातिब फरमाया। हजरत अली की परवरिश और तरबियत हजरत मोहम्मद की आगोश में हुई। हजरत अली का कद मयाना, दोहरा बदन, सर के बाल किसी कदर उड़े हुए, बाकी जिस्म पर बाल, दाढ़ी लंबी, घनी और रंग गंदुमी था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और अली दोनों एक ही नूर से हैं। उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु

0: पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते 26 भारतीय ताजरों का पहला दस्ता कल चीनी इलाके तिब्बत में दाखिल हो सकता है, जो कि 6 साल के वक्फे के बाद सरहदी तिजारत की बहाली का मौका होगा। तिजारती अफसर और धारचूला सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम आशीष जोशी ने कहा कि 26 तिजारती पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 ताजिर और 9 मोमिन शामिल हैं। गुंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लिपुलेख दर्रे के नजदीक वाकई गांव के गोदामों में पहले ही अपनी अशिया जमा कर ली है। इंतजामिया को 103 से ज्यादा ताजिरों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं और जल्द ही 25 ताजिरों के दूसरे दस्ते के लिए तिजारती पास जारी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। भारत चीन सरहदी तिजारत का आगाज पहले 1991 में हुआ था, लेकिन 2020 में कोविड-19 वबा के मद्देनजर इसे मुअत्तल कर दिया गया था। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। यह हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबत झेली थी। 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खल्फिशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था, जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाज को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके नतीजे में आगला ने मुकम्मल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार रखने या बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाशिंगटन में नेशनल मॉल में एक रैली से खिताब करते हुए जहां ट्रंप ने ईरान के साथ उनके मुआहदे को तारीखी करार दिया और कहा कि अब मगरबी एशिया खित्ते में अमन कायम हो सकेगा। जनाब ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान अमरीका समझौते के बाद शेयर बाजार में उछाल आ रहा है और तेल की कीमतें कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया एक बेहतर और महफूज सिंध की तरफ बढ़ेगा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका के साथ ईरान के इब्तदाई अमन मुआहदे के तहत ईरान में मुआयने की कार्रवाइयां अंजाम देगा। जापान में नवानिगारों से बात करते हुए IAEA के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि वह बहुत जल्द ईरान में मुआयने के सिलसिले में तारीखें तहकीकार मकाम और दीगर उमूर पर काम करेंगे। अमरीका के एक वफाकी जज ने सदर ट्रंप की इंतजामिया को इंतखाबात से मुतालिक उनके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज्यादातर हिस्सों को नाफिज करने से मुस्तकिल तौर पर रोक दिया है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत की दस्तावेजी सबूत की शर्त की तजवीज भी शामिल है। इसराइल की दिफाई फोर्सेस IDF हमास के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई जारी रखे हुए है। IDF ने कहा है कि इसराइली फिजाइया ने इस हफ्ते के शुरू में जनूबी गजा पट्टी पर हवाई हमला किया और इस हमले में हमास की फौजी विंग का मेंबर अकरम मोहम्मद महमूद अबू माजी हलाक हो गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को आर्मीनिया में हाल ही में मुनाकिदा पार्लियामानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फीफा आलमी कप में ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको और मराकश आज अपने अपने मुतालिका मैच जीतकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला में शदीद जलजले महसूस किए गए जिसमें 32 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सदर ने मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान किया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल जामे इकतसादी और तजारती मुआहदे के नफाज से कबल आज बरतानिया के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तजारत फिर शुरू होगी। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के इब्तदाई अमन मुआहदे के तहत ईरान के बहुत ज्यादा अफजूदा किए गए यूरेनियम का मुआयना करेगी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर।

फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सदाबहार गीत आज भी लोगों के दिल के करीब हैं। और 1971 में 18वें फिल्मफेयर पुरस्कारों को कुछ 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से इसने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मुमताज ने पुरस्कार प्राप्त किया। अन्य नामांकन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजीव कुमार, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता जगदीप, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए गुलशन नंदा और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए मोहम्मद रफी भी नॉमिनेटेड रहे।

0: खुश रहे।
1: हमारे पास बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से। हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता अभिनव कुमार, गौरव कुमार और प्रणव कुमार। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रंजन गुप्ता। संदेल नवापाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव नथाना से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार।

ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार सचित, कुमार प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वत, कुमारी सानवी और कुमारी हर्षिता।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी तो परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और मैं हूं आपके साथ रिया प्रकाश। श्रोताओं, फिल्म खिलौना अपने मानसिक स्वास्थ्य और प्रेम पर आधारित अपने शानदार अभिनय, भावनात्मक कहानी और सदाबहार संगीत के लिए जानी जाती है। श्रोताओं, फिल्म की कहानी विजय कमल यानी संजीव कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी प्रेमिका की मौत के सदमे में मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसके परिवार वाले उसे ठीक करने की उम्मीद में एक युवा वैश्या चांद यानी मुमताज को उसकी पत्नी का नाटक करने के लिए घर लाते हैं। विजय धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसे चांद से प्रेम हो जाता है, लेकिन ठीक होते ही विजय कमल चांद को भूल जाता है। इसी बीच ये पता चलता है कि चांद विजय कमल के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर विजय कमल के परिवार वाले चांद को धुतकारते हैं, पर अंत में परिवार वाले उसे अपना लेते हैं।

Then let us dance.

0: Oh, yes, September 8th.
1: Oh, wait a minute.
0: Darling,

श्रोता सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये है शांति नगर सोनीपत से। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव नेहरू चौक पैथन से हमारे साथ जुड़े हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा। एसएसएल कॉलोनी कोरबा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता सीमा राव और के राव। श्रोताओं, फिल्म खिलौना गुलशन नंदा के उपन्यास पत्थर के होंठ पर आधारित थी। फिल्म की कहानी को सबसे पहले गुरुदत्त को ध्यान में रखकर लिखा गया था, लेकिन वो के आसिफ की फिल्म लव और गॉड में बहुत व्यस्त थे और गुरुदत्त के निधन के बाद इसे रोक दिया गया था। फिर फिल्म चंदन बोहरा ने बनाई। इस फिल्म के लिए संजीव कुमार को मुख्य किरदार के लिए चुना गया। फिल्म में जो किरदार मुमताज ने निभाया है उसे उस किरदार के लिए सबसे पहले शर्मिला टैगोर और वहीदा रहमान को चुना गया था।

संदेश आया है फजिलका पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विष्णु खेड़ा, लाडली खेड़ा, शालिनी टुआंशी खेड़ा और वाणी खेड़ा। मेरठ कैंट से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता दिग्दर्शन और कविता गौड़। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। छत्तीसगढ़ चूरी लाइन मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अफसाफ, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। दिनोरी तिलीवाला उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। श्रोताओं, खिलौना फिल्म की कुल कमाई बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ की हुई थी, जिससे पता चलता है कि फिल्म कितनी सुपरहिट रही होगी। और इस फिल्म में कलाकारों ने जो अभिनय किया है वो काफी सराहनीय था। श्रोताओं, यह फिल्म खिलौना 1963 में बनी तेलुगु फिल्म पुनर्जन्म का रीमेक था और साथ ही इसे तमिल और मलयालम भाषा में भी बनाया गया है।

0: क्या तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों में सुरक्षित कौर बैलेंस बुलेटिन दिया खास खबर। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा प्रणालियों के मजबूत ब्रिक्स सहयोग का सबक दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का कहना कि कोविड-19 दहशतगर्दी ते अज दी जलवायु घटनावां दे प्रभाव वर्गियां चुनौतियां दा सामना करन लई अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रदान प्राप्त दान विच कथित माली विनिमय की अदालती निगरानी हेठ जांच सिद्ध करने वाली जनहित अर्जी की तुरंत सुनवाई करने का इंकार कर दिया है। वेनेजुएला च जोरदार भूचाल नाल तबाही 32 मौतों के 700 तो वध लग सकती ते भारत के दखल तो बाद पारिस विच चंडीगढ़ के विरासती फर्नीचर की नीलामी रोकी गई।

प्रवृत्ति जगाते तो सोशल मीडिया संचालित राजनीति में देख रही है। दक्षिण कोरिया के जेजू टापू से शांति और खुशहाली के एक कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विलक्षणता का दावा करने का थाने की वरतों करने में घट झिझकता रुझान बदल रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 दहशतगर्दी जतदियों जलवायु घटनावां के प्रभाव वर्गिया चुनौतियों का सामना करने लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि प्रभावशाली दिशा विचार नवी समझ और नजदीकी संबंध बनाने विश्व व्यवस्था को स्थिर करने और खास एजेंडिया के सहयोग राही समस्यावां का हल करने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत दक्षिणी कोरिया जहाज निर्माण डिजिटल सेहत बुनियादी ढांचा जा रक्षा वर्ग के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में प्राप्त दान विच कथित माली बेनियमिया की अदालती निगरानी हेठ जांच डिमांड करने वाली जनहित अर्जी PIL की तुरंत सुनवाई को इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने पटिशनर को भरोसा दिया कि मामला टूटे समय से सूचीबद्ध किया जाएगा। पटिशनर एडवोकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने जस्टिस PV नागरत्ना के जॉयवाला वार्डशी के बेंच में दसा कि उन्होंने पटिशन अहम सबूतों को सुरक्षित करने लिए तुरंत सूचीबद्ध करने तक सीमित है। पटिशन में अयोध्या के राम मंदिर में दान और भेटा से संबंधित CCTV फुटेज डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड अते होर सबूतों के इस्तेमाल की मांग की गई है। यह ट्रस्ट वालों प्राप्त दान की पूरी जांच संबंधित फंडा के प्रबंध में वधेरे पारदर्शिता की भी मांग करती है। पटिशन में कथित माली बेनियमिया दर्शित करे अते उत्तर प्रदेश सरकार वालों गठित विशेष जांच टीम SIT वालों चल रही जांच का हवाला दिया गया है। पटिशनर ने स्पष्ट किया कि मामला सिर्फ दान के प्रबंधन से संबंधित अधिकारिक कार्रवाई में दखलअंदाजी की मांग नहीं करता है। इस दौरान लखनऊ डिवीजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई वाली 3 मेंबरी विशेष जांच टीम ने हाल ही में राज्य सरकार ने अपनी मुढ़ली रिपोर्ट सौंप दी थी। मंदिर के फंडा के कथित गबन की विरुद्ध सहित जांच अजी भी जारी है। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह उस दिन की याद दवादा है जो 25 जून 1975 में भारत के संविधान को कुचला गया। यह एमरजेंसी दधीकिया कारण पीड़ित हरेक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अज उन्हें सारे को श्रद्धांजलि भेंट की थी जो एमरजेंसी दौरान लोकतंत्री कदर कीमतों की रक्षा लिए दृढ़ता नाल खड़े सन। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि एमरजेंसी संविधान से सीधा हमला सी। उन्होंने कहा कि इसने नागरिक आजादियों को मुअत्तल करन प्रगटावे की आजादी से पाबंदी लाने और सियासी नेतावान पत्रकारों और समाजिक वर्करों की गिरफ्तारी का दबाव बनाया।

0: कोरिया को एक सिफर से हराकर पहली मर्तबा नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को बहाल किया गया था। यह हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थी। पेश है एक रिपोर्ट। 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खल्फिशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत पर सवाल उठ रहे थे। इसके नतीजे में आमला ने मुकम्मल अख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे और सरकारी अथॉरिटी पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इसके बाद मुख्तलिफ आईनी तहफात मुअत्तल कर दिए गए थे। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजुई करने के हक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्रेस सेंसरशिप नाफिज कर दी गई थी। यहां तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था जो प्रेस की आजादी के तहफ्फुज का एक कानूनी इदारा है। दिल्ली से सकलेर अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उन सभी को खराज अकीदत पेश किया है जो इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अकदार के दिफा में साबित कदम रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इमरजेंसी के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इमरजेंसी आईन पर एक बराह रास्त हमला था। उन्होंने कहा कि उस अरसे में सिविल आजादियों को मुअत्तल कर दिया गया था, इजहार राय की आजादी को खत्म कर दिया गया था और सियासी रहनुमाओं, सहाफियों और समाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया था। वजीर आजम ने कहा कि इमरजेंसी ने उन बेशुमार शहरियों के गैरमामूली हौसले को भी उजागर किया था जिन्होंने खामोश रहने से इनकार किया था और वो आईन में दर्ज नजरियात की खातिर डटे रहे। जनाब मोदी ने कहा कि आईन 140 करोड़ भारतीयों की उमंगों, हुकूक और फराइज को बयान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क इंसाफ, आजादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों के तहफ्फुज की खातिर मुसलसल अलग बसता है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का मकसद इस स्याह बाग की मुल्क की यादों को जिंदा रखना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि कांग्रेस पार्टी मुस्तकबिल में कभी फिर जमहूरियत और आईन पर ऐसा हमला न कर पाए। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस वक्त हथियारों के बढ़ते हुए इस्तेमाल, ज्यादा खतरात मोल लेने के रुझान और सोशल मीडिया के दौर से हमाहंग सियासत का मुशाहदा कर रही है। जनूबी कोरिया में अमन और खुशहाली 2026 के जेजू फोरम से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि मुख्तलिफ नवयत की तफरीक का रुझान पहले से ज्यादा बढ़ गया है और ममालिक अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल में भी पसोपेश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी तरक्की खुद भी ऐसे रुझानात को फरोग दे रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोविड 19 जैसे चैलेंजों, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों या आबोहवा की शदी सूरत हाल के असरात से निपटने के लिए बैन अल-अक़वामी इश्तराक की जरूरत है। डॉ जयशंकर ने कहा कि बासर ममालिक के दरमियान मुफाहमत और करीबी ताल्लुकात से आलमी निजाम को मुस्तहकम बनाने और मखसूस एजेंडों पर मबनी ताउन के जरिए मिसाइल से निमटने में मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान जहां साजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेहत, बुनियादी ढांचे और दिफा जैसे शोबों में एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली बाहमी सलाहियतें मौजूद हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में एक हादसे में हलाक होने वाले अफराद के करीबी रिश्तेदारों को 2-2 लाख रूपये और जख्मियों को 50,000 रूपये की नकद इमदाद देने का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने कहा कि रियासती सरकार इस बात को यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है कि मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की

0: राजधानी लंदन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वो भारत बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती समझौते CETA और कंपेनियन डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के आगाज के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेंगे, जिनका इतलाक आइंदा माह की 15 तारीख से होगा। इम्कान है कि उनका यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहरी तजारती व सरमाएकारी को नई रफ्तार देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुफाद आमा की उस अर्जी पर फौरी समाप्त करने से आज इनकार कर दिया, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जानिब से वसूल किए गए अतियात की अदालत की निगरानी में तहकीकात कराए जाने की दरखास्त की गई है। लेकिन अदालत ने अर्जी गुजार को यकीन दिलाया है कि इस मामले को सुनवाई के जल्द ही फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। दिल्ली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज कहा कि भारत तवानाई का निजाम कायम करने की खातिर ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान इश्तराक को मुस्तहकम करना चाहता है। गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तरक्याती मकासद और पायदार तरक्की के हसूल के लिए काबिल इस्तेताद, काबिल भरोसा और पायदार तवानाई नागुजीर है। तवानाई के शोबे में भारत की सरमाएकारी को उजागर करते हुए जनाब मनोहर लाल ने कहा कि भारत डिजिटल तरीकेकार से चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े बिजली निजाम में से एक के लिए बुनियाद रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर्स पहले ही लगाए जा चुके हैं और यह सिलसिला आने वाले वर्षों में तेज रफ्तारी से जारी रहेगा। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर केराम मोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट परवाज का इफ्तिताह किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से मरबूत करने वाली पहली हब एंड स्पोक परवाज का मकसद दुनिया के साथ बिला रूकावट भारत के तुलो अर्ज को मरबूत करना है। वेनेजुएला की सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने मुल्क में एक के बाद एक 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले आने के पेश नजर मुल्क में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया है। आज सुबह इन जलजले के सबब काकस और मुतसिल इलाकों में कई इमारतें ढह गई। मुल्क से खिताब करते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने ऐलान किया कि तलबा के लिए क्लासें मुअत्तल की जाती हैं और आइंदा नोटिस तक गैर जरूरी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। सदर रोड्रिगेज ने कहा कि सिलसिलेवार ताकतवर जलजले के बाद 32 अफराद हलाक हुए हैं और 700 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने वेनेजुएला में शदीद जलजले के बाद हुए जानी नुकसान पर रंजोगम का इजहार किया है। फीफा आलमी कप में ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको और मराकश आज अपने अपने मुतालका मैच जीतकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गए हैं। जनूबी अफ्रीका आज सुबह मोंटेरे में जनूबी कोरिया से 1 गोल से जीत हासिल करने के बाद पहली मरतबा नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। खास खबरें एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। नायब सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने उन सभी को खाली अकीदत पेश किया है जिन्होंने एमरजेंसी के दौरान जमहूरी अखबार का दिफा किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत बैलोखानी इश्तराक पर जोर किया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल जामे इकतसादी और तजारती मुआहदे के नफाज से पहले बरतानिया का 3 रोजा दौरा करेंगे। भारत ने तवानाई के शोबे में मजीद ब्रिक्स शराकत दारी पर जोर दिया है। खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Mirza Williams with the midday news. The headlines. Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship. Powerful earthquakes strike Venezuela back-to-back, causing multiple building collapses, state of emergency declared. South Africa advanced to knockout stage of FIFA World Cup for first time, defeating South Korea 1-0 in Monterrey.

0: ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। जुड़साता जेठ मास शरद चांदनी उदार, जुड़साता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत बीत गया, एक बरस बीत गया,
2: शीत सौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना, मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही। डॉ जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को

0: अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। यह मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमापार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये और घायलों को 1-1 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
2: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर

0: वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्वकप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्वकप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 23 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। जिला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत सभी सुनने वाले श्रोताओं का एक ही कलाकार कार्यक्रम के इस सफर में। आज हैं आप मेरे यानी मनीषा के साथ और आज होगा ये सफर तय मेरे साथ। तो सभी लिसनर्स को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक ही कलाकार में बात आज हिंदी फिल्म संगीत की।

जी हाँ, उस भूली दास्तां को आज हम याद कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ही कलाकार में हमारे वो कलाकार हैं जिनकी जयंती भी है आज, और भारतीय सिनेमा के इतिहास में वो कलाकार एक महान संगीतकार और गजलों के बेताज बादशाह मदन मोहन के नाम से जाने जाते रहे हैं। उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन तो करते हैं और साथ ही साथ उनके उन गीतों के दौर में फिर से जीते हैं अपने उन लम्हों को, अपने उन एहसासों को। जी हाँ, 1924 में 25 जून को जन्मे मदन मोहन जी 1950 से 1975 के बीच लगभग 100 फिल्मों में मधुर और कालजयी संगीत देते रहे और ऐसी अमर धुन रचते रहे जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।

दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ। उनके पिता राय बहादुर चन्नीलाल उस समय मध्य पूर्व में कार्यरत थे। उनकी मां एक कवियत्री थी और उन्हीं से ही मदन मोहन जी को संगीत और साहित्य की गहरी समझ विरासत में मिली। दिलचस्प बात यह है कि उनके जीवन की उन्होंने कुछ समय सेना में भी काम किया। फिर अपने जीवन काल में वे आकाशवाणी लखनऊ से भी जुड़े, जहां उन्हें उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों को करीब से सुनने, समझने और उनसे सीखने का अवसर मिला। इस तरह संगीत से उनका नाता गहराता गया।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे साथ इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज एक ही कलाकार में हम बात कर रहे हैं उस महान संगीतकार की जो गजलों के बेताज बादशाह कहे जाते थे। उनकी जो गजलें हैं उसका जो दौर है वो कभी थमा ही नहीं दोस्तों। आज भी उनके संगीत को चाहने वाले बहुत से दीवाने बैठे हुए हैं। हम उनकी बातें करेंगे और भी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक संदेश।

0: शास्त्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक आप सभी का, आप है आपके अपने रेडियो चैनल आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ में। और साथियों, आपके मेल, आपके संदेश, जिनकी प्रतीक्षा हमें होती है, हमें पता है आप अपने कार्यक्रम को बहुत गौर से सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जो श्रोता साथी नए हैं, उनके लिए हम बता दें कि आप जुड़े हुए हैं आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार, जो हिंदी फिल्म जगत के महान संगीतकार कहे गए मदन मोहन मालवीय जी, जिनकी आज जयंती है। तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहें, अपने संदेश और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया हमें बताते रहें ipradiodelhi@gmail.com पर। और दोस्तों, आपको मैं बताती हूं कि 1950 में जब मदन मोहन मालवीय जी ने आंखें फिल्म से स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की, तो मदन मोहन जी को सफलता का रास्ता इतनी आसानी से नहीं मिला। जिस दौर में नौशाद, शंकर जयकिशन और सचिन देव बर्मन जैसे दिग्गज और स्थापित कलाकार वहां थे, उनके बीच मदन मोहन ने किसी की कॉपी न करते हुए अपनी मौलिकता को बरकरार रखते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। एक ऐसी पहचान जहां दर्द भी था और नजाकत भी।

श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ipradiodelhi@gmail.com के संदेशों के लिए और हमारे पास बहुत सारे संदेश आ चुके हैं हमारे श्रोता साथियों के, जिन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और इनमें हमारे श्रोता साथी हैं फारूक अली खान गुन्नौर यूपी से, फैजी फराज फरहीन और फारिया और ताहिरा इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है वो है हमारे साथ चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर जी। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उसी तरह धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और उन्होंने कार्यक्रम को बहुत सराहा है, जी बहुत शुक्रिया। उन्हें मदन मोहन जी से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो बहुत अच्छी लग रही है। ये है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को इतने गौर से सुनते हैं और हमारे हौसले को आप बढ़ाते हैं। गांव नधाना पंजाब से हैं हरजिंदर छंडा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, जी बहुत शुक्रिया। हमारे कार्यक्रम के साथ जब आप जुड़ते हैं हमारे हौसले को बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ हमारे कार्यक्रम को करने का कोई तो मकसद पूरा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कबीर रेडियो रेडियो श्रोता संघ से डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देवी देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा तामूरिया, उनके साथ राधिका प्रभा देवी तामूरिया और इसी तरह हमारे साथ जुड़ी हुई है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुलसी मस्कीन हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमेशा की तरह और खूबसूरत गीतों के लिए वो हमें धन्यवाद कह रहे हैं। जी आपका धन्यवाद इन गीतों को ध्यान से सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे साथ हैं अमर रमेश कुमार खत्री और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। ये कराची से हैं और आपका शुक्रिया इतनी दूर से जब हमसे हमारे

श्रोता साथी जुड़ते हैं तो सच में हमें लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद पूरा हुआ। और देखिए, हम आपके नाम लेते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज है उनकी जयंती जिन्होंने हमें खूबसूरत संगीत का तोहफा दिया हिंदी फिल्म जगत में। तो आइए सुनते हैं हम उनके एक और खूबसूरत से गीत को।

जब हिंदी फिल्म संगीत की खूबसूरत जोड़ियों की बात करें तो उसमें लता मंगेशकर और मदन मोहन जी का जिक्र लाजमी है। लता जी ने स्वयं कई अवसरों पर कहा कि मदन मोहन की धुन पर गाना उनके लिए एक विशेष अनुभव है। दोनों की जोड़ी ने कई कालजयी गीत दिए जिनमें लग जा गले, नैना बरसे, आपकी नजरों ने समझा, बैया ना धरो, नैना में बदरा छाए।

दिल ढूंढता है और वो भूले दास्तां जैसे बहुत सारे ऐसे गीत आते हैं जो हमारे दिलों में आज भी बसे हुए हैं। मदन मोहन साहब को गजल किंग यूं ही नहीं कहा गया, बल्कि फिल्म संगीत में गजल को एक नया मकाम उन्होंने दिलाया। उस दौर में जब दूसरे संगीतकार तेज और लोकप्रिय धुनों पर ध्यान दे रहे थे, वहीं मदन मोहन जी ने शब्दों की आत्मा को संगीत में उतारने का प्रयास किया। उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत और मखमली भावनाओं का अनूठा संगम बनाया। आज भी संगीत के विद्यार्थी उनकी कंपोजिशंस का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इतने महान संगीतकार होने के बावजूद मदन मोहन जी अपने जीवन काल में उतने पुरस्कार नहीं पा सके जिनके वो वास्तव में हकदार थे। समय की सीमाओं से परे धुन रचने वाले संगीतकार मदन मोहन जी का संगीत आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि पहले था।

तो दोस्तों संगीत के उस जादूगर का सफर जिसने दर्द के सुरों में अपने आप को पिरोकर अमर कर दिया। आज के कार्यक्रम में एक ही कलाकार ने संगीतकार और गजल सम्राट मदन मोहन जी की जीवन से जुड़ी बातें सुनी आपने। अब आपकी होस्ट और दोस्त मनीषा बोस को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे अगले सफर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, शब बखैर।

साहिल आपको बता दें, फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर हम पेश करेंगे सो सलाम और नोहे। 3:30 अंदाज़े नजर प्रोग्राम के तहत सुनिएगा मुहर्रम के का पैगाम, इंसानियत के नाम पर एक मुबाइसा। 4:00 से आप समाज फरमा सकते हैं नोहा सलाम और मर्सी है। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: खबरें सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अख्तियार का दिफा किया था। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत बैन अल-अक़वामी इश्तराक पर जोर दिया है। भारत और चीन के दरमियान 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते सरहदी तजारत फिर शुरू होगी। 26 तजारती पासिस जारी किए गए हैं। ब्रिक्स 2026 की भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग गुरुग्राम में शुरू हो गई है। वेनेजुएला में ये के बाद दिगड़े आए दो जजरों में बहुत से मकानात मुनहदिम हो गए हैं। हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। और फीफा आलमी कप में मॉन्टेरे में जनूबी अफ्रीका जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा कर पहली मरतबा नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। खबरें तफसील से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। यह हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी

दुख जाए ना जख्मी मेरे बच्चे का गला है, उजड़ा हुआ बेशीर का गहवारा पड़ा है इस शक

مرتبہ بس ایک نبوت کا الگ کر دیجئے، مرتبہ

और ये शेर भी खास तौर से अस्कर राम के, छोड़कर ये दामने, छोड़कर ये दामने, अब दस कहां जाए,

अपनी खातिर रबी ने कर लिया सजदा तवी। शेर अर्ज कर रहा हूं, आप

जलाए दिल में तो रखे अली का चरा जला।

जलेगा तेरे मुकाबिल न फिर किसी का चरा। बताओ पढ़े थे अंधेरे।

عليهم كاشط القرآن نجلت قلبه بلا

हुसैन उसकी डाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है।

ले उसको तो तस्लीम मुकम्मल कर दी, हृदय शुक्र ने तलवार को सैफल कर दी। हर मुजाहिद ने शहादत का सफर होने तक, वैसे खंजर के लिए रात बसर होने तक, दिल को तस्बीह से बहलाया सहर होने तक, हंज की सूखी जबां खून से पर होने तक।

पहचान हुई, जो जिन्हें देखी मनोहार की पहचान हुई, इसके सामने ईशार की पहचान हुई। शुभ की पहली किरण दामन सबसे फूटी, शुभ की पहली किरण दामन सबसे फूटी, आत्मा साफ हुआ रुख सिया ही फूटी, मेर में रौनक बाजार कवा की लूटी, ताज पेशानी नाजी की कलगी टूटी। सोजे तकदीर वो अकबर से जवा की आवाज, सोजे तकदीर वो अकबर से जवा की आवाज, वजदे झूम गई सुन के अजा की आवाज। अपने सीने से निकलने लगे अंसार हुसैन, अपने किरदार में हम सूरत किरदार हुसैन, अपनी खुशबू में बराबर दिले गुलजार हुसैन, कोई तमसी नहीं ऐसे वफादार हुसैन। मौत से आंखें लड़ाते हुए गाजी आए, मौत से आंखें लड़ाते हुए गाजी आए, रन में आ जाते वफा बन के नमाजी आए, जब बयाबान मुजाहिद हुए मजहूल नमाज, जब बैत पर की तमाम बजने लगे जंग के साज, तीर आ आके गिरे पेश चढ़े बंदा नवाज, खून से भीग गया पै करे सुल्तान हिजाज। शुक्र हक करते हुए सिर्फ पैगंबर उठे, जंग थे रीत मुसलों से बहत्तर उठे, बोले अब्बास अभी दामन सहरा उठे, शाम शाम में एक आम में कूफा उठे, प्यासे बच्चों की तरफ नहर का धारा उठे, शाह पर मैं तो बहता हुआ दरिया उलटे, पंखों पर दूर गिरे जंग का नक्शा पलटे, हो जो मौला की इजाजत तो जमाना पलटे। बोले कासिम तो पता जान लड़े क्या है जरूर, फौज बुजिल है मेरी तेज ही काफी है जोर, पैसगी आग है सीने में चिलकता है तनूर, फिर भी ठहरेगे न मैदान में छिपा है मगरूर। मुझको भी देखिए कुरान के माफक की तरह, मुझको भी देखिए कुरान के माफक की तरह, कागजू लश्कर सफाक को कागज की तरह, बोले ये ओम मोहम्मद शहसर की कसम, शेर जाफर की कसम, फातह खैबर की कसम, शेर जहरा की कसम, खून पैगंबर की कसम, हर्ष कुरान की कसम, दावर मैसर की कसम। एक की हद से बढ़ेंगे न ये बढ़ने वाले, मौत के घाट उतर जाएंगे चढ़ने वाले। दस में धूम हुई खुर दिलावर आया, आने वालों में पितर आया, बरादर आया और गुलाम आया, तो किस्मत का सिकंदर आया, पेश करने के लिए दिलबर सरवर आया। एक खुशा बख्त तो फिर आ गए क्लब की तरफ, यूं जहन्नुम से पलट आते हैं जन्नत की तरफ, बेजबां गोद में है सिख समाही की तरह, प्यास में जलती हुई हक की गवाही की तरह, रन में आना है इसे शेर इलाही की तरह, ये भी शामिल है बहत्तर में सिपाही की तरह। सब्र से जुल्म में नींद मात न खाई होगी, सदियों सदियों जो रहे ऐसी लड़ाई होगी। गोसे चश्मे से शब्बीर ने लश्कर देखा, सब्र और हौसला दोनों को बराबर देखा, फूल की पत्ते में इल्मास का जौहर देखा, नर्म डाली में लचकता हुआ संकट देखा, जिनकी दानिश में नहीं शायद जिद यारो, जिनकी दानिश में नहीं शायद जिद यारो, ऐसे होते हैं मोहम्मद के मुजाहिद यारो। बादशाहों के फुतूहात नहीं है इस्लाम, बादशाहों की फुतूहात नहीं है इस्लाम, करबला देखो तो समझोगे मोहम्मद का पयाम। वालिये शाम की बैत से ये इंकारे ईमान, अपने मफूम में है फिक्र के आजाद का नाम। करबला आह नहीं है किसी फरियादी की, करबला आह नहीं है किसी फरियादी की, हर बशर के लिए बुनियाद है आजादी की। मकतबे इल्म में कुरान का वरक है इस्लाम, मकतबे इल्म में कुरान का वरक है इस्लाम, मकलो दानिश के गुलाबों का तबक है इस्लाम, जबरे शाही से तसादुम का सबक है इस्लाम, खूने औलाद पैगंबर की सबक है इस्लाम। इस शफकदार में इस्लाम का मंजर देखो, इस शफकदार में इस्लाम का मंजर देखो, तीर के सामने छह माह का अजगर देखो, दर से इस्लाम है मखलूक पर शफकत।

30 करोड़ भारतीयों की उमंगों, हकूक और फराइज को बयान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क इंसाफ, आजादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों के तहफ्फुज़ की खातिर मुसलसल अहद बसता है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का मकसद इस सहबाब की मुल्क की यादों को जिंदा रखना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि कांग्रेस पार्टी मुस्तकबिल में कभी फिर जमहूरियत और आईन पर ऐसा हमला न कर पाए। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया इस वक्त हथियारों के बढ़ते हुए इस्तेमाल, ज्यादा खतरात मोल लेने के रुझान और सोशल मीडिया के दौर से हम आहंग सियासत का मुशाहिदा कर रही है। जनूबी कोरिया में अमन खुशहाली 2026 के जेजू फोरम से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि मुख्तलिफ नौइयत की तफरीक का रुझान पहले से ज्यादा बढ़ गया है और ममालिक अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल में भी पसोपेश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी तरक्की खुद भी ऐसे रुझान को फरोग दे रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोविड-19 जैसे चैलेंजों, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों या आबोहवा की शदीद सूरतहाल के असरात से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी इश्तराक की जरूरत है। डॉ जयशंकर ने कहा कि बासर ममालिक के दरमियान मुफाहमत और करीबी ताल्लुकात से निजाम को मुस्तहकम बनाने और मखसूस एजेंडों पर मबनी तआवुन के जरिए मसाइल से निमटने में मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान जहाज साजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेहत, बुनियादी ढांचे और दिफा जैसे शोबों में एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली बाहमी सलाहियतें मौजूद हैं। कॉमर्स और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के तीन रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वो भारत बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी तजारती समझौते और कंपेनियन डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के आगाज के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेंगे, जिनका इतलाक आइंदा माह की 15 तारीख से होगा। इम्कान है कि उनका ये दौरा दो मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारती सरमायाकारी को नई रफ्तार देगा। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। ब्रिक्स 2026 की भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग गुरुग्राम में शुरू हो गई है। बिजली के महकमे के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इक्तसादी, समाजी और इंसानी तरक्की के लिए तवानाई बेहद अहम है। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब खट्टर ने कहा कि पायदार तरक्याती मकासिद के हुसूल के लिए काबिल इस्तेताअत, काबिल भरोसा और पायदार तवानाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत काबिल तजदीद तवानाई की अपनी सलाहियतों, स्मार्ट ग्रिड बुनियादी ढांचे और तवानाई के स्टोरेज के निजाम को तेजी से वसत दे रहा है ताकि मुस्तकबिल की जरूरतों के लिए बिजली के शोबे को तैयार रखा जा सके। ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग कल तक जारी रहेगी। मीटिंग में तवानाई की यकीनी फराहमी, तवानाई तक रसाई और जिद्दत तराजी जैसे शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रे के रास्ते 26 भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल चीनी इलाके तिब्बत में दाखिल हो सकता है, जो कि 6 साल के वक्फे के बाद सरहदी तिजारत की बहाली का मौका होगा। तिजारती अफसर और धारचूला सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि 26 तिजारती पास जारी किए गए हैं, जिनमें से 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। वेनेजुएला की सदर डेल्सी रॉड्रिगेस ने मुल्क में एक के बाद एक 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले आने के पेश नजर मुल्क में हंगामी सूरतहाल का ऐलान कर दिया है। आज सुबह इन जलजलों के सबब कारकस और मुत्तसल इलाकों में कई इमारतें ढह गईं। मुल्क से खिताब में मोहतरमा रॉड्रिगेस ने ऐलान किया कि तलबा के लिए क्लासें मुअत्तल की जाती हैं और आइंदा नोटिस तक गैर जरूरी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। उन्होंने सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में सरकारी और निजी सेहत निजाम को भी सरगर्म रहने को कहा। सदर रॉड्रिगेस ने कहा कि सिलसिलेवार ताकतवर जलजले के बाद 32 अफराद हलाक हुए हैं और 700 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में शदीद जलजलों के बाद हुए जानी नुकसान पर रंजोगम का इजहार किया है।

सुफियाना कलाम तुहा को पसंद आया ना। आबिदा परवीन दा नाम तुसा सुना होसी, उंदे गाए कलाम भी सुने होसी। आबिदा परवीन पाकिस्तान दे सूफी गावन आले हिन, गावन आले ही नहीं ए सूफी संगीत दे बनावन वाले मुखी भी हिन। इन्हा को आज दे समय दा बखूबी सुफियाना कलाम गावन आला मनिया वेंदा है। उंज ता बहुत सारा सूफी गावन आले ते गावन आलिया ने अपने सूफी गावन कीते खास।

अगला सिलसिला लेके हाजिर होवांगे माझी दी महक। सुगम संगीत दे विच आज वक-वक आवाजां च गीत थोड़ी नजर करांगे। आखिरी सिलसिला तमन्ना दा।

Thank you.

सुन रहे थे सुगम संगीत। हम वादे हां इस मजलिस दे आखिरी सिलसिले वल। तमन्ना दे विच आज असी थोड़ी नजर कर रहे हां आलम लोहार दी आवाज च एक गीत।

0: is that what we're going to expect to see?
1: Not really. I just warm me up myself.
0: You're going to be bowling first up here on this pitch. It's a run scoring. It's very, very flat. What's your thoughts on that?
1: Yeah, I think it's a good wicket to bat on. But if you keep yourself in the game and, you know, spend some time on the wicket, it's a really good wicket. But I think for bowling also, if you, you know, spin your fingers, there is something you can, you know, take from this pitch, and hopefully our bowling group will come up strong today.
0: A little bit in your favour is that you have played here. You've also played on this pitch against South Africa. What did you learn from that?
1: Yeah, I think that was a very good pitch to bat and ball. And I think, as I mentioned, you know, you just have to read the pitch and react accordingly.
0: Is it just about the win, or is there a little bit of net run rate in there as well?
1: I think first to win, and then let's see how it goes.
0: Okay, let's see how it goes. Thanks a lot. All the best today.
1: Thank you.
0: Bangladesh, you have won the toss. They're going to be having a bat first.
2: टॉस बांग्लादेश ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है. आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश T20 क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 23 बार आमने सामने हुई है. केवल 3 बार बांग्लादेश को जीत मिली है और तीनों बार 6 करते हुए मिली है. लेकिन यहां पर फैसला पहले बल्लेबाजी करने का किया है. चेतन, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को?
3: देखिए, जैसे अभी तक खबर आ रही है मैनचेस्टर से कि विकेट थोड़ा सा लो एंड स्लो विकेट रहेगा, और जब आपको ये अनुमान रहता है कि लो एंड स्लो रहेगा तो चेज करना विद स्पिनर्स आपकी टीम के अंदर, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके मन में यह है कि अगर जितना बैटिंग के लिए अभी तक विकेट अच्छा है उसके बाद थोड़ा डस्टी की संभावना, हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया यही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और हार का सामना करना पड़ा था, तो वो चीजें आप कैलकुलेट करते हैं एज ए टीम. आप वो देखते हैं कि पिछला मैच भारतीय टीम ने कैसा प्रदर्शन किया, क्या उनकी रणनीति थी, उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया कि अगर बाद में स्पिनर्स को कोई मदद मिलेगी तो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट गेम में मैं हर समय कहता हूं विन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट. रन ऑन बोर्ड हर समय अच्छा रहता है टीम के लिए.
0: जी चेतन, बिल्कुल. लेकिन पिछला मैच अगर हम देखें तो वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट भारत ने यही निर्णय लिया था. हम क्योंकि बॉलिंग भारत करने जा रहा है तो पावर प्ले बॉलिंग की अगर हम बात करें हमारे तो बहुत सारे इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं. लेकिन पिछले मैच को अगर हम खास करके देखें तो पावर प्ले में बहुत सदी हुई बॉलिंग की थी भारतीय बॉलर्स ने, केवल 25 रन और आखिरी ओवर तो चेन्नई का मेडिन विकेट. लेकिन उसके बाद भारत इस बढ़त को कैपिटलाइज नहीं कर पाया. विजय,
4: अगर आप देखें जिस तरीके से आप गेंदबाजी का जिक्र कर रहे हैं, एक जो चीज जो भारतीय टीम के साथ जानी चाहिए या कंडीशंस के बारे में आप बात करें तो जब आप अपने मीडिया पेसर्स की तरफ देखते हैं तो शायद उस तरीके का ये वर्ल्ड कप अब तक नहीं रहा है जहां गेंदबाजी के बारे में आप बात करने की कोशिश करते हैं. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जिसके बारे में हमने अभी जिक्र भी किया, साउथ अफ्रीका, उसमें अगर आप देखें तो आप बड़े मैचों के हिसाब से जितने रन आपको बोर्ड पर लगाने चाहिए तो वो थे वहां पर, वो गेंदबाजों के लिए था मैच जीते, वहां से मैच भारतीय टीम को जिताना. तो वो एक चीज है जो बहुत अहम रहेगा आपका इस टूर्नामेंट में आपको बनाए रखना या यहां से इम्पोर्टेंट मैचेस के अंदर जीत दिलाना.
2: आपने बात की कि अभी तक सीमर्स ने शायद उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया और इसके चलते कुछ बदलाव भी हमें टीम में देखने को मिल रहा है. रेणुका सिंह ठाकुर जो कि सबसे अनुभवी सीमर है उनको प्रथम एकादश में शामिल कर दिया गया है. साथ के साथ राधा यादव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11. शशांक, लास्ट टाइम इंडिया वेंट टू बांग्लादेश विद अ क्लीन स्वीप, राधा यादव वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, शी पिक्ड अप 10 विकेट्स. दोज हैप्पी मेमोरीज मस्ट हेल्प हर अगेंस्ट बांग्लादेश.
3: होपफुली सो. Well, this is a match which India are supposed to win, and I don't see any problems for India. I think it's going to be the spin department which will again do the needful for India. It's a very interesting stat I would like to share. In the 3 matches that India have played, they have taken 24 wickets. 22 of them have been taken by the spinners.
2: Right.
3: Nandini Sharma has taken 2 wickets.
2: Right.
3: Kranti Gaur and Arundhati have not taken a single wicket. You know, so Manchester, this pitch, even Australia, for Australia, Sophie Molyneux, Wareham and all, the spinners took wickets against South Africa. So this is going to be a spinner's trap. And as far as Radha is concerned, she's also a good left-arm spinner.
2: Mm-hmm.
3: She's a very good fielder and a competent batsman.
2: Mm-hmm.
3: But, you know, shouldn't be a problem for India today. The problem will be against Australia in the last game of the group stage.
2: Mm-hmm. Will you have to try it?
0: Yes, I think.

0: आप देखें किस तरीके से भारतीय टीम की थिंकिंग रही है, बाधा की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय में हर एक लिहाज से, अगर आप उनकी फिटनेस देखें, उनकी फिटनेस देखें, मैं मानता हूं वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है इस समय वुमेन क्रिकेट में, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं, उनका पहला मैच है और आपकी सोच कहीं ना कहीं चल रही थी कि जो हम स्पिनर्स खिला रहे हैं वो इनफ है, लेकिन यहां पर आकर आपको ये लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और हमें चाहिए शायद।
1: श्रीलंका पाटिल की इंजरी उसमें एक बड़ा
0: बहुत बड़ा
1: जी,
0: क्योंकि जिस समय पे ये इंजरी उनको हुई है, सिर्फ गेंदबाजी नहीं, जिस नंबर पे वो बैटिंग करती है वो नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो एक ऐसी यंगस्टर इस टीम के अंदर रही है पिछले कुछ समय में, अगर आप देखें डब्ल्यूपीएल के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली पिछले सीजन में इंजरी की वजह से पूरा सीजन बाहर हो गई थी, यहां पर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच फील्ड इंजरीज ज्यादा रही है उनको, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा लॉस जरूर है, लेकिन इतनी सक्षम है ये भारतीय टीम कि अगर आप किसी भी कंडीशन के बारे में बात करें, इस फॉर्मेट के बारे में बात करें, जो दो बचे हुए मैचों के बारे में बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए।
2: जी सक्षम है भारतीय टीम जैसा विजय ने कहा, और बिल्कुल क्यों ना कुछ श्रोताओं को भी हम शामिल कर लें, तो अगर आपके पास हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स हैं 011-234-21083 और 011-234-21085। चेतन रेणुका सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है आज प्लेइंग 11 में, सबसे अनुभवी बॉलर्स में है वो भारत की, and she has a good record against Australia and has the ability to swing the ball early and strike against their top order. क्या ये सबसे बड़ा कारण बना है उनको टीम 11 में शामिल करने का?
3: देखिए जितना मैंने अभी तक पूरा देखा, एक महीना पहले भारतीय टीम वहां पहुंची, आपके मिडिल ऑर्डर में अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं है, आप परी शफल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और हमारा एक स्पिनर की अगर हम बात करें, जो अभी आप बात करें श्रियंका पाटिल, वो इंजर्ड हुई, वहां से एक झटका लगा और अभी तक आप अपने तेज गेंदबाजों के साथ सेटल नहीं हो पाए। देखिए वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप जितना शफल करते रहेंगे, जितना टीम में बदलाव करते रहेंगे, तो एक चीज है जो कंसिस्टेंसी हम कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर, एक भरोसा वो प्लेयर्स को आप नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी। और रेणुका को मौका मिला तो जितना रेणुका को हमने गेंदबाजी करते देखा, इनको तो आपको शुरू में मौके दे देने चाहिए थे। और देखिए इस कंडीशन के अंदर आप तो वो तेज गेंदबाज को लेकर आते हैं जिसके पास एबिलिटी है स्विंग कराने की। देखिए इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, आप 120 पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, अगर आप में एबिलिटी है स्विंग कराने की, आप किसी को भी आउट कर देंगे, बड़े से बड़े प्लेयर को आउट कर देंगे, लेकिन आप गति आप जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने कहा कि स्विंग बहुत अच्छा करती है, तो ऑब्वियसली आप इन कंडीशंस में उसी गेंदबाज को खिलाते हैं जिसके हाथ पे अच्छा खासा स्विंग है।
1: लेकिन चेतन इसी से जुड़ा एक सवाल है, अभी हम देख रहे हैं जो वेदर फोरकास्ट है, हीट वेव की वार्निंग दी गई है, 31 डिग्री अभी टेम्परेचर है, और हम देख रहे हैं मैदान में धूप खिली हुई है, ऐसे में आपको लगता है कि उस तरह का स्विंग प्राप्त होगा?
3: देखिए उस कंडीशन में इंग्लैंड 45 डिग्री तो है नहीं, इंडिया जैसी हालत है नहीं, और दोनों ऐसी कंट्रीज है जिनको गर्मी की आदत है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल गर्मी है, बेशक इंग्लैंड के अकॉर्डिंग 30 डिग्री बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आपने क्षमता है स्विंग कराने की, आप स्विंग करा सकते हैं, ये नहीं कि वहां के अकॉर्डिंग गर्मी है, अगर आप तो इंडिया में सारी उम्र क्रिकेट खेले, अगर आप यहां स्विंग कराते हैं तो वहां तो आपको ऑटोमेटिकली स्विंग कराना
0: चाहिए। How come she didn't play earlier? So there's something, it's not about just the swing, it's about something that kind of rhythm. Maybe she's not finding her rhythm there. Otherwise, when you went for a tour like this and your most experienced bowler not finding her place in the playing 11 in all the games, there's something going on where the team management feel that she's not in that kind of rhythm, and come this game they feel if they qualify, getting the semi-finals, they'll be needing her, and that's the reason why they're introducing her in this game.
1: But tell you who is always in rhythm, it's our listeners. Mudita, ek shrota hamare saath jud chuke hain, aaiye unse baat karte hain.
2: Ji, apna naam bataye aur aap kahan se hamare saath jud rahe hain? Good evening.
0: Namaskar, Rupan ji.
3: Namaskar.

0: चलिए शशांक, हम चाहेंगे कि आप ये सवाल लें और विपिन जी को इसका जवाब दें।
1: जी, तो जैसा आपने पूछा है विपिन जी, 160 170

0: का टोटल अगर होता है तो हम चेस कर पाएंगे कि नहीं। तो जहां तक मुझे लगता है इतना स्कोर शायद बांग्लादेश नहीं बना पाएगी। ये स्लो विकेट है जहां स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारी स्पिन अटैक अच्छी है। पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारे स्पिनर्स ने ही संभाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश 160-170 का टारगेट दे पाएगी। अगर 160-170 बना लेती है बांग्लादेश तो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या स्कोर बनता है। और जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, अगर हम आज का मैच जीत भी लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस फॉर्मेट में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारे लिए मुश्किल है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है और साउथ अफ्रीका आज रात में 11 बजे से हॉलैंड के साथ खेल रही है, नेदरलैंड्स के साथ, और लास्ट मैच उनका बांग्लादेश के साथ है। तो ये वो दे आर एक्सपेक्टेड टू बीट बांग्लादेश एंड हॉलैंड। उस केस में अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे और हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो स्थिति अभी गंभीर है हमारी टीम की, देखते हैं आगे क्या।
1: सभी समीकरण आपके सामने पेश कर दिए गए हैं विपिन जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए होंगे आप हमारे इस आंसर से। लेकिन सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, विजय बॉलिंग की हमने बात की, आप मौजूद हैं हमारे पैनल पर, विकेट कीपिंग पर बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऋचा घोष पहले मुकाबले में थोड़े से फंबल्स हमें देखने को मिले, उसके बाद लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, उनकी ग्लव वर्क को आप कैसे आंकते
2: हैं? ऋचा घोष अगर मैं उनकी तरफ देखता हूं तो बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर आप उनकी तरफ नजर डालेंगे तो आपको लगता है कि ये एक बनती हुई टीम है। हम अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें और कह रहे हैं कि वो प्रबल दावेदार है खिताब की, तो इस वजह से है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसके कुछ 7-8 खिलाड़ी हैं वो पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में लगातार खेलते हुए आए हैं। हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे यहां पर जैसे ही जीतते हैं वो हर जगह की एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको कंडीशन देखनी बहुत जरूरी है, आप इनके खिलाफ ये देखना बहुत जरूरी है। ये टीम इस फॉर्मेट के लिए अभी भी आपकी एक स्टेटल टीम नहीं है। आपको मैचेस बल्लेबाज जिताते हैं, आपको टूर्नामेंट गेंदबाज जिताते हैं। आपने बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया, पिछले कुछ मैचेस में आपने हमेशा गेंदबाजी में बदलाव किया, तो आपकी जो बॉलिंग यूनिटी सेट नहीं है। और आप ये नहीं कह सकते कि आप खिताब के दावेदार हैं, हम कह जरूर रहे जब भी आप टूर्नामेंट में जाते हैं, लेकिन एक बनती हुई टीम है और धीरे धीरे समय लगता है बनते इस टीम को बनने के लिए। क्वालिफिकेशन का भी जो पिछला सवाल मैंने पूछा था, बांग्लादेश में तो 4 पॉइंट पड़े, अगर हम हिन्दुस्तान की तरफ देख रहे हैं तो बांग्लादेश, और सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी आज क्या लगी है कि उनकी सोच, क्योंकि आप वही हैं जो आप सोचते हैं, रन ऑन द बोर्ड वो टीम सोचती है कि हम यहां से जीत सकते हैं। उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी या डिफेंसिव सोच नहीं थी कि हम इंडिया पहले खेलेंगे, अगर उनका ठीक बन नहीं रहा तो हम उनको पकड़ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी काबिलियत पे खेलते हैं, हम रन बोर्ड पे लगाएंगे और वहां से फिर गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बांग्लादेश के लिए भी। जी बिल्कुल, और जैसा चेतन कह रहे हैं कि बांग्लादेश बिल्कुल डिफेंसिव मोड में नहीं है, इस मैच चेतन विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक करेंगे। कई अच्छे स्पिनर्स भी है बांग्लादेश के पास जो आपको पुश करेंगे, खास करके विकेट लाइक ओवर ट्रफी।
0: बिल्कुल, देखिए पीस ऑफ केक तो क्रिकेट में कुछ नहीं होता, आप जिस मर्जी टीम के, जैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी आपकी सामने जो टीम है वो कमजोर आप नहीं मांग सकते उनको। लेकिन जो विजय भी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको और जोड़ने की कोशिश करूंगा। जब आपके बॉलिंग कोच ये स्टेटमेंट देते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो उसका ये मतलब होता है कि आपका जो बॉलिंग लाइनअप है वो सेटल नहीं है। वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पर आगे अगर आप ये कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो वो सबको मालूम है कंडीशन कैसी है इंग्लैंड में, आप अपना 9-1 9-2 हंसने तैयार रखते हैं गेंदबाजी, और गेंदबाजी एक आपकी ऐसी है जो आपको टूर्नामेंट्स जिताएंगी, जो आपको ट्रॉफीज जिताएंगी, और आप उसे 200 रन 220 रन कर देंगे। अगर आपकी गेंदबाजी में दम नहीं है तो ऑपोजिशन 220 रन चेज कर लेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने सेटअप को थोड़ा ठीक कीजिए। मिड ऑर्डर में इतनी शफल की जरूरत नहीं है, जमीमा पीछे जाएगी, 3 नंबर पर खेलती आई है, आप जमीमा को पीछे नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीजें ऐसी है विच इंडियन मैनेजमेंट हैज टू कीप टू ऑर्डर। हमारे लिए बहुत ईजी है यहां से बैठकर बोलना, आई डोंट नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, बट वी आर जस्ट होपिंग टू मेन टीम डू वेल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई वर्ड नहीं होता क्रिकेट के अंदर, बांग्लादेश के लिए बात करें या इंडिया की बात करें, बेटर क्रिकेट बस गली बच्चे।
1: एक बात बहुत आपने ठीक कही कि कम नहीं आ सकते बांग्लादेश को, क्योंकि भारतीय वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करने वाले जानते हैं कि 2018 में ये गलती हम कर चुके हैं, एशिया कप के फाइनल में इसी बांग्लादेश की टीम से।

0: यार एक भाव रोचक विजुअल चेतन अभी हमने देखा, फोर एटफन जो कि रिजर्व अंपायर है वो एक बक्सा लेके आई और रेणुका ठाकुर को बोला उन्होंने कि आप गेंद का चयन कीजिए, किस गेंद से आप गेंदबाजी करना चाहेंगे। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताया कि क्या देखता है गेंदबाज जब गेंद का चयन करता है, क्या क्या वो चीजें होती है, क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिस पर वो ध्यान देता है।
1: इस बल पर हम आते हैं, वेलकम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल पूछिए। वेलकम बैक वेंकट रेड्डी जी, अपना सवाल पूछिए।
0: इंडियन टीम बोलने के बिना चल सकती है, लेकिन ये शो आपकी कॉल के बिना नहीं चल सकता। जी ठीक है, मैं चाहूंगा आप दोनों सवाल को कंबाइन करके हमें एक जवाब दें, क्योंकि बोलिंग एक्सपर्ट आप ही
2: हैं। जो रेणुका यादव को, रेणुका ठाकुर को मौका मिला है तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है, जो भी हमारे कॉलर कह रहे थे कि गेंदबाजी में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि वीक है। और जहां तक आपने गेंद का बात की ना, देखिए आप तेज गेंदबाजों के हाथ में वो बॉक्स दे देते हैं, वो अपने आईडिया से कि उनका हाथ का साइज क्या, मतलब मैं अपने जमाने में तो ऐसा करता था कि मेरे हाथ में ग्रिप मेरा ठीक आ रहा है। कभी कभी होती है कि बॉल थोड़ी बड़ी होती है, आपके हाथ में वो सेटल नहीं होती है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ रेणुका ठाकुर नहीं करेंगे, वो दूसरे जो तेज गेंदबाज होंगे उनको भी दिखाई जाएगी। बट उसकी सेम पोजिशन की आप बात करें, कितना कम्फर्टेबल आप उसको फील कर रहे हैं, ऐसा हमने आपने देखा उल्टा ऐसे करके ऊपर फेंकते हैं, ये सीम से वापस आ रहा है कि कभी कभी होता है कि नहीं सीम से अच्छा आ रहा। तो ये गेंदबाजों की अपनी अपनी सोच रहती है।
0: इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज में जोड़ूंगा आपको, इसमें एक खिलाड़ी टीम के अंदर रहता है, एक गेंदबाज रहता है जिसकी जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी रहती है कि आप जाके गेंद देखेंगे, तभी आप देखिए ज्यादा लोग नजर नहीं आते। वो एक सीम रहता है और सिर्फ एक नहीं, आजकल अगर आप देखें तो थर्ड अंपायर फोर्थ अंपायर जो आता है वो एक और बॉल आपको हमेशा बोलता है कि दो बॉल होनी चाहिए रखने के लिए। कई बार डी शेप हो जाती है, कई बार गेंद जाके कहीं टकराती है, तो उसके लिए दो बॉल आपको बोलते हैं हमेशा रखने के लिए। तो ये भी होता है, लेकिन चूज एक ही खिलाड़ी करता है और उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड ये करता है कि उसको किस तरीके से फील रहती है और बाकी सारे उस पर विश्वास रखते हैं कि ये जो भी पिक करेगा ना वो हमसे उसके साथ चलेगी।
2: तो मेरे समय में मैं कपिल पाजी को कभी बॉल उठाने नहीं देता था कि मेरा हाथ और उनके हाथ में जमीन आसमान का फर्क था, और जब उनके हाथ की गेंद करती थी मेरे हाथ में फिटी नहीं होती थी, तो मुझे बोला जा रहा था आप चूज करो, जैसे मुझे बोल रहे तो एक तो ड्यूटी लगती है आपकी करने के लिए।
1: जी, और क्योंकि बॉलों की बात चल रही है, विजय शिपाली वर्मा के रूप में भारत को एक नया ऑलराउंडर मिल गया है, ये जो सफलता मिल रही है शेफाली को बॉलिंग में, क्या वो इसलिए कि शेफाली को रीड करना बैटर्स के लिए उतना इजी नहीं हो रहा है? वुड यू लाइक टू डीकोड शेफाली's बॉलिंग फॉर आवर लिसनर्स?
0: इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डीकोड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज शी वाज नॉट बॉलिंग फोर ओवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस अर्लियर ऑन, लाइक शी वाज यूज्ड एज अ पार्ट टाइमर एंड शी इज डन अ फिनोमिनल जॉब एज अ पार्ट टाइमर, शी इज अ विकेट टेकर, यू नो वी सी दैट। वी सी अ टॉप No, batter, bowling. I always feel you think like a batter and then you bowl. But I don't want to face, that's what you can deliver. And I think that works in a favor when the top order batter is used as an all-rounder.
3: चलिए गेंदबाजी के विकल्पों की हमने बात की, बट देयर इज दिस थिंग कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। शशांक, नंदिनी शर्मा बैट ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल के लिए जानी जाती है, डेथ ओवर बोलिंग के लिए जानी जाती है, पिछले मैच में हमने देखा डेथ ओवर्स में उनको गेंद नहीं थमाई गई। तो जिस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, क्या आप उससे अभी तक सेटिस्फाइड है या इंडिया को उसमें अपना आउटलुक बदलने की जरूरत है?
2: यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ओके, यू नो आई थिंक it's about the performance of your resources. Mm-hmm. You know, so the entire middle order has not performed. You know, the captain herself, she came into the tournament on the back of a very good form, but hasn't been able to make her mark. Jemima has disappointed. Richa has not been her own self. So it's all, the entire onus is now on Smriti and Shefali through the tournament to score runs and on Sri Charani to take wickets. So these are the three players who have carried the team, but it's a game of 11 players, you know, so only three players performing. And Deepti Sharma of course took 5 for 10 against Pakistan, but she gave 44 runs of her, in 4 overs against South Africa. So as the leading all-rounder in world cricket, she is supposed to, you know, do her best against the top teams.

0: there, she couldn't deliver the goods. So it's all about how the resources perform, and there is the problem. And because of that, there has been tinkering with the team. And as Chetan Bhai said, in a big tournament, it is very important to have a settled team. You know, because of injury or because of you know, unexpected slump in form, you may change one player here and there. But in a big tournament, you need to have, you know, a settled army. So that has not been the case with India.
1: जी, और आज हम उम्मीद करते हैं कि उन सारी गलतियों को भारतीय टीम पीछे छोड़ेगी। इस वक्त हम मैदान पर देख रहे हैं कि टीम लाइंड अप है नेशनल एंथम्स के लिए, और कोइंसिडेंटली दोनों ही देशों के नेशनल एंथम्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, तो इस वक्त नेशनल एंथम्स की प्रक्रिया जारी है। मुझे तो आप कुछ पूछना चाह रही है।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है और इसी बीच में आईसीसी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, रिटर्न टू प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस जो है, और साफ कह रहे हैं कि मदरहुड At the end of the innings, it's just a pause. प्रेगनेंसी की वजह से अभी तक हम जो देखते थे कि महिला क्रिकेटर्स को करियर ब्रेक या रिटायरमेंट लेना पड़ता था, लेकिन अब आईसीसी ने फीमेल क्रिकेटर्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए गाइडलाइंस बनाई है। 16 हफ्तों का पूरा फ्रेमवर्क बनाया है, जिससे मां बनने के बाद खिलाड़ियों पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं हो, बल्कि स्टेप बाय स्टेप रिकवरी, मेडिकल सपोर्ट और ग्रेजुअल कमबैक हो सके। आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने कहा कि किसी भी प्लेयर को मां बनने और देश के लिए खेलने के बीच चुनाव न करना पड़े, इसलिए ये गाइडलाइंस आई गई है। मुझे एक्सेप्शनल स्ट्रोक बाय द आईसीसी,
3: मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। अभी आपने कहा कि मतलब स्टॉपेज नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पॉज है। देखो, मुझे लगता है और ये चीज ऐसी है जहां पर आप एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करें कि किस तरीके से आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट की तरफ देखता है और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की क्योंकि आप बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, वहां एक जो और हमने पहले भी बात की, स्ट्राइक रोटेशन जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमको। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पावर प्ले में 59 रन, डेथ ओवर्स में 36, जो कि साउथ अफ्रीका ने 39 जहां पर स्कोर किया था और पावर प्ले में 25 रन बनाए थे। असली फर्क जो बनाया जाकर के वो मिडिल ओवर्स का था। भारत ने जहां पर 63 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, वही साउथ अफ्रीका ने 97 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
4: देखिए, आपने विकेट कमाए, आप सेट होकर आउट हुए। अगर आप जमीवा की बात करें, 36 रन बनाकर आप आउट हो रहे हैं, 47 रन बनाकर हरमनप्रीत कौर आउट हुई है। तो अगर आप यहां से दोनों में से एक भी आखिर तक अगर इंडियन टीम को ले जाता लास्ट ओवर तक, तो ऑब्वियसली आपको 15-20 रन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। तो देखिए, असल में क्रिकेट के अंदर ये है, जैसे आप विकेट गवाएंगे कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगेगा, वो कभी आपको आएगा, नया बैटर अंदर आएगा, आपको सेटल होने के लिए समय लगेगा। तो दे कपल ऑफ थिंग्स है विच आई थिंक, देखिए जो चीज गई उसके ऊपर ज्यादा सोचने का अब जरूरत नहीं है। आज जो है डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट टीम, डिफरेंट एटमोसफियर ऑल टुगेदर, आप अपनी जाकर नॉर्मल क्रिकेट खेलिए एंड कॉन्सेंट्रेट कि आगे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बहुत दूर है। आज आपके सामने क्या चीज है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, प्ले योर बेस्ट करिए एंड रेस्ट, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे आप अपने आप जीतेंगे। जी
2: जी बिल्कुल, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और आप जीतेंगे। तो चलते चलते आप लोगों से हम प्रेडिक्शन लेना चाहेंगे कि बांग्लादेश का क्या आपको लग रहा है कि क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप?
4: आपको लगता है कि हम उसमें जाएंगे, इंडिया का मैच है तो ऑब्वियसली इंडिया आउट कर देंगे।
2: कहां पर रोकना चाहिए भारत को बांग्लादेश की टीम को?
3: मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छा बांग्लादेश होकर खेलेगी तो कहीं शायद 100-110।
0: सुनीश, उन्होंने 124 बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे लगता है उससे कम में हिंदुस्तान को उन्हें रोक देना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, इससे कम रोक देना चाहिए। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से हाजिर होंगे मिडिल इनिंग्स ब्रेक में और आप चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम की ओर।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: 2020 महिला विश्व कप में आज भारत का बहुत बड़ा मुकाबला बांग्लादेश के साथ, और भारतीय टीम को यह मैच जीतना ही होगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखना है। बहुत जरूरी

0: भारत के इस मुकाबले में जीत, क्योंकि साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारत का समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। स्वागत है आप सभी का भारत और बांग्लादेश के बीच T20 विश्व कप के इस मुकाबले में जो ग्रुप ए का मुकाबला है, और मैं हूं आपके साथ हिंदी कमेंट्री के साथ धर्मेंद्र मुनि राजेश। हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर हैं देवायन सेन, स्टैटिस्टिशियन है रमेश अर्जुन परब, स्कोरर वेंकट बालरेड्डी। तो ये मुकाबला आज बहुत जरूरी है भारत के लिहाज से, बहुत जरूरी है इस सेमीफाइनल की रेस को बनाए रखने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए। दिव्यांग स्वागत आपका, बहुत जरूरी ये मैच भारत के लिए।
1: Absolutely, thanks for the warm welcome and a very good evening to everybody who's tuning in as well. It's an important match. It's being played on the same pitch on which India played their last match as well, against South Africa at Old Trafford, Manchester. And of course, the toss has been won by the Bangladesh team, which is unchanged from their last match, which featured a good victory against Pakistan. So technically, even Bangladesh in the running for a spot in the final four. And India with two interesting changes because they brought in.
2: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
3: आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत जीत गया, एक बरस बीत गया।
4: शीत सौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
2: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयारा और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है।

0: विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमरीका के फुलटर्न में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने भारत के ही गिसनीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम। राम।
1: तो कुसुम बहन हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर। और भाई अपने इस कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी लेकर के आते हैं, उनकी फसलों से संबंधित, पशुओं से संबंधित और उनके स्वास्थ्य से संबंधित।
0: बिल्कुल, और मनोरंजन भी कराते हैं अतुल भाई। और देखिये जो मसाले हैं हमारे लिए और किसानों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और मौसम के हिसाब से यदि हम बात करें तो अजवाइन और सौंफ जो मसाले फसलें होती हैं, खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इन फसलों की बाजार में वर्ष भर मांग बनी रहती है, जिससे उचित मूल्य मिलने की संभावना रहती है। इसके फायदे भी बहुत सारे हैं अतुल भाई। मसाला फसलों की बाजार में अच्छी मांग रहती है, इसलिए यदि हमारे किसान भाई बहन इस मसाला पर इसकी खेती करेंगे तो उसको ज्यादा उनको मुनाफा होगा।
1: बिल्कुल, देखिए यानी कि कम क्षेत्र में भी आप अच्छा आर्थिक लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं, और फसल विविधीकरण से खेती का जोखिम जो होता है वो भी कम होता है। और कुछ मसाले फसलें ऐसी भी हैं कुसुम बहन
0: जी
1: जो औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं, जिनका व्यवहारिक महत्व अधिक होता है और अच्छी देखभाल से उच्च गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त जो हमारे किसान भाई जो है कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सावधानियां भाई यही है कि जो हमारे किसान भाई हमें खरीफ मौसम अधिक वर्षा के कारण जल भराव जो है अपने खेत के अंदर थोड़ा सा ना होने दें, क्योंकि ये जो मसाले वाली जो फसलें होती हैं थोड़ा सा जो है नाजुक होती है।
0: बिल्कुल अतुल भाई, मसाला फसलें जो होती हैं वो सफल खेती का आधार है। उचित समय पर बुआई, बेहतर जल निकासी और नियमित निगरानी या सावधानी के साथ की गई खेती किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ दिला सकती है।
1: बिल्कुल, और देखिए और अधिक जानकारी हम अपने सभी किसान बहन भाइयों को दिलवाते हैं डॉक्टर बल्ला से कि अजवाइन और सौंफ जैसी मसाला फसलों की खरीफ में किस प्रकार से बुआई कर सकते हैं, और ये इसकी जानकारी दे रहे डॉक्टर बलराज सिंह, परियोजना निदेशक मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर, और इनसे बातचीत कर रहे हैं तुषार पारा सर। तो कुछ मैं लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों राम राम। भारतीय रसोई की कल्पना मसालों के बिना अधूरी है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनके साथ हम मसालों की खुशबू पर नहीं बल्कि उसकी आर्थिक ताकत पर बात करेंगे। भारत आज दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं धान से अलग हटकर मसाला फसलें हमारे किसानों की आय को दोगुना करने और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक गेम चेंजर साबित हो रही है। इसीलिए हमारी इस बातचीत का विषय भी है मसाला फसलों की खेती से अधिक लाभ और कृषि अर्थव्यवस्था में इसका योगदान, और इस विषय के हर छोटे बड़े तकनीकी और आर्थिक पहलू पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलराज सिंह, जो कुलपति हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा से। सर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार।
2: जब भी हम मसाला फसलों की बात करते हैं तो अक्सर लोगों का ध्यान केवल केरला या दक्षिण भारत की तरफ जाता है, लेकिन आज उत्तर और मध्य भारत के जो किसान हैं वो भी मिर्च, धनिया, जीरा और सौंफ की खेती से बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। बदलते समय में भारत के इस एग्री मैप पर जो कृषि मानचित्र है उस पर मसालों की इस नई स्थिति को आप कैसे देखते हैं?
3: पहले तो मैं बताना चाहूंगा भारत का बहुत ही प्राचीनतम इतिहास रहा है मसालों को लेकर के, और आपको पता होगा वास्को डी गामा आया तो वो मसालों की खोज में ही, काली मिर्च इलायची इनकी खोज में ही आया था
2: कालीकट के तट।
3: लेकिन आज जैसा आपने कहा जो काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, वही मसाला फसलें हैं, वो दक्षिण में होती हैं, लेकिन आज उत्तर भारत में और मध्य भारत में भी बहुत सारी दूसरी मसाला फसलें जिनकी खेती की जाती हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से दो किस्म के मसाला फसलें होती हैं। एक तो होती है बहुवर्षीय, जो एक बार लग गई तो कई साल तक चलेंगी, जैसे काली मिर्च है। काली मिर्च का पौधा एक बार लग गया उसको सहारे की जरूरत है, तो वो फिर आपका 30, 40, 50 साल तक चल सकता है। उसको सहारा चाहिए, चाहे एरिका नट पर लगाएं, चाहे कोकोनट के सहारे चढ़ाएं, चाहे दूसरी किसी प्लांटेशन क्रॉप उसके सहारे आप चढ़ाते हैं उसको। फिर इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, ये सब बहुवर्षीय फसलें हैं। हल्दी, अदरक भी उसी में आती है बहुवर्षीय में। लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन काल से स्थिति बदली है आज, और जो हमारे बीजीय मसाला फसलें हैं जो एक वर्षीय हैं और एक वर्षीय के अंदर भी मौसमी है, सीजनल है, और ज्यादातर सर्दी फसलें हैं जिसमें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, विलायती सौंफ और आपका सोया, ये प्रमुख फसलें हैं जो कि उत्तर भारत में और मध्य भारत में होती हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं काफी सालों के बाद, क्योंकि आज इन फसलों को लेके, काली मिर्च, इलायची, इनको लेके दूसरे देश, जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, ये हमारी प्रतिस्पर्धा में आए हैं विश्व व्यापार में, वो हमारे को टफ कंपटीशन देते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी दूसरी फसलें हैं जिनको हम कम आंकते थे, जैसे जीरा है
4: जी।
3: जीरा हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बीजीय मसाला फसल है, एक वर्षीय है और एक वर्षीय के अंदर सीजनल, और सीजनल में भी मात्र ये 120 से 130 दिन की फसल है जीरा कुल। और इसका पहले खेती व्यापक रूप से होती थी हरियाणा में भी, राजस्थान में, गुजरात में, लेकिन आजकल सीमित इलाके खेती के रह गए हैं। क्योंकि क्या है कि जो जीरे को जो जलवायु चाहिए वो माइल्ड विंटर और ड्राई वेदर जो चाहिए, ठंड हो लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर ठंड ना हो, और ड्राई वेदर, नमी की मात्रा कम हो। वरना जीरा जो है एक बीमारी, जो सबसे बड़ा कारण है ना उगाए जाने का, वो है अल्टरनेरिया ब्लाइट, झुलसा, चरमा, या दूसरा जो लोकल भाषा में नाम लेते हैं किसान, वो अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
4: तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बीमारी की बात करी कि जब भी हम मसाला फसलों की बात करते हैं तो उसमें एक आम किसान के लिए रिस्क प्रॉफिट रेशियो कैसे रहता है, मुनाफे का क्या अनुपात रहता है?
3: देखिए बिल्कुल, जो दूसरी फसलें जैसे आपने बात की उसके मुकाबले बीजे मसाला फसलों में आमदनी ज्यादा होगी, डेढ़ गुना से दुगुना तक ज्यादा होगी, लेकिन उसको करने का तरीका सही और उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई दूसरी दिक्कत है, उसका सामयिक रोकथाम वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं बता रहा था जीरा सिर्फ 120 दिन की फसल है, और आज पश्चिमी राजस्थान का इलाका जो है नागौर से शुरू होकर जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, ये इलाके राजस्थान के हैं जो प्रचुर मात्रा में जीरे की खेती करते हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, कुल मिलाकर मैं मोटी मोटी बात ये करूं, जहां धुंध गिरेगी वहां जीरा नहीं हो सकता। तो उन इलाकों में जहां धुंध नहीं गिरती और नमी की मात्रा कम है, ठंड भी है, माइल्ड विंटर है, वहां पे जीरा होता है। इसके अलावा फिर आप चले जाइए गुजरात में, महसाना से होते हुए, सुरेंद्रनगर से होते हुए आप कच्छ तक चले जाइए, जिसके अंदर जूनागढ़, राजकोट, ये पूरे इलाके जीरे के हैं। तो जीरे का एक सीमित अब क्षेत्रफल होगा, लेकिन धनिया दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट फसल है। इसका जो कटोरा है, जैसे कि जीरे का उत्पादन का कटोरा मैंने बताया पश्चिमी राजस्थान और गुजरात दो ही है, और धनिया का जो कटोरा है वो है मध्य प्रदेश के इलाके और राजस्थान के इलाके। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट? आपका दक्षिणी राजस्थान, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, मंदसौर, नीमच, गुना, ये डिस्ट्रिक्ट्स कुछ एमपी के, कुछ राजस्थान के मिलकर कटोरा बनाते हैं, जहां बड़े पैमाने पर धनिया तो होने को आंध्र प्रदेश में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है।
4: थोड़ा सा आपने इन क्षेत्रों की बात की, तो मसालों की खेती के लिए जो मिट्टी की तैयारी और पोषक तत्व होते हैं उनका प्रबंधन आम फसलों से कितना अलग है, और इसके लिए क्या कोई विशेष सॉइल टेस्टिंग की जरूरत होती है?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन इन इलाकों में जहां खेती की जाती है, इसका मतलब वहां की जमीन, वहां की आबोहवा, वहां का वातावरण इन फसलों के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। जीरे का जैसे मैंने बात की, जीरे को बहुत ज्यादा खाद पानी नहीं चाहिए, जीरे को मैक्सिमम, वैसे हम शुरुआत में कहते हैं आप स्प्रिंकलर का

0: यूज करें, लेकिन जनवरी के 15 के बाद हम कहते हैं अब स्प्रिंकलर मत चलाना कहीं धुंध ना गिर जाए, तो फिर कम सिंचाई। अगर कम पोषक तत्वों की आवश्यकता जीरे को है, बहुत ज्यादा नहीं है अगर दूसरी फसलों के मुकाबले करें, लेकिन बात यही है कि समय पर बुआई, वैरायटीज का सिलेक्शन। अब जैसे एक बीमारी आती थी जीरे के अंदर, अल्टरनेरिया ब्लाइट, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, वो आती है एंड में जाकर 15 जनवरी 20 जनवरी के बाद या फरवरी के महीने में। अब वैरायटी आ गई 130 दिन से, वैरायटी 100 दिन की वैरायटी भी डेवलप हो गई, तो वो वैरायटी कहीं ना कहीं एस्केप कर सकती हैं, उससे बचकर निकल सकती हैं, तो वो बात है। धनिया में भी जैसे, ये नहीं कि आप सिर्फ धनिया दाने के लिए करेंगे जो मसाले में पिसा जाएगा, वो नहीं। आजकल डुअल पर्पज, आप हरा धनिया भी तो खाते हैं ना, आप गार्निशिंग करते हैं, सब्जियों में डालते हैं, तो वैरायटी सिंगल पर्पज भी है, दाने की वाली भी है, हरी भी है, डुअल पर्पज वैरायटीज भी है, तो दोनों तरीके की खेती होती है। अब आजकल गर्मी में आप देखेंगे हरा धनिया बहुत महंगा है, इसका मतलब उसकी खेती। फिर आपका सौंप है, सौंप का इलाका भी राजस्थान में बिलाड़ा से होता हुआ, आबुरूड से होता हुआ गुजरात में चला जाता है पूरा का पूरा, और सौंप में भी वही है। हालांकि थोड़ी लंबी अवधि की फसल है, करीब करीब 150 दिन से लेकर 180-190-200 दिन तक की फसल है, लेकिन आजकल ड्वार्फ वैरायटीज अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज अवेलेबल है। और सौंप में भी किसान करते हैं, जब देखिए दो फायदे हैं, एक तो आप पका के काटोगे तो भाव कम होगा, उपज ज्यादा होगी, एक आप उसको जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे है और उसकी शेप ड्राइंग करते हैं, छप्पर वगैरह में आपके वो तोड़ लिया आपने अम्बल्स और उनको सुखाया, जिसको पिचक जाती है, हरी होती है और मीठी होती है, जिसको लखनवी सौंप गलती से कहते हैं हम लोग, तो वो लखनऊ में नहीं होती कोई सौंप, उसका तरीका है कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करके सेफ ड्राइंग करना, उससे भाव उसका दुगने से ज्यादा होगा, मीठी होगी, लोग उसी को खाने के बाद खाते हैं ज्यादातर, मिश्री के साथ या चीनी के साथ सौंप को। इसके अलावा मेथी, मेथी में भी यही है, खुशबू वाली मेथी भी है, जो छोटे दाने वाली मेथी जिसको हम गलती से कसूरी मेथी कहते हैं, ये नागौरी मेथी, पान मेथी, ठीक है, ये नाम है इसका। फिर दूसरी बड़े दाने वाली मेथी, जिसको हम दाने के रूप में भी, क्योंकि उसके औषधीय गुण है मेथी के, औषधीय गुण क्या है, जोड़ों का दर्द, आपको गठिया जोड़, दूसरा डायबिटीज में, तो दो इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, एक तो 4-HIL और दूसरा डाइजिनिन, दो कंटेंट है, लेकिन एक कड़वा तत्व भी इसके अंदर है, सैपोलिन कंटेंट है, जिसकी वजह से कड़वी है, इसलिए हम लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, और उसको हरी पत्ती के रूप में भी खाते हैं, आप सब्जी बनाते हो, पराठे वगैरह में डालते हो, तो डुअल पर्पज वैरायटीज भी है और सिंगल पर्पज वैरायटीज भी है, दाने वाली भी, तो दोनों तरीके से। तो मेथी का खेती भी ज्यादातर राजस्थान में झुंझुनू से लेकर सीकर से लेकर और पूरे कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मेथी की खेती भी होती है।
1: तो डॉक्टर, अगर हम इसके आर्थिक पक्ष की एक बात करें, तो इन फसलों के लिए कोई किसानों को वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार से करना होता है और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता है?
0: एक तो आधुनिक तकनीकें उगाने की किसानों को इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे जीरा महंगी फसल है, ठीक है, बीज कितने का आएगा, बहुत महंगा आएगा। अब आप बाजरे का बीज लोगे तो सस्ता आएगा, लेकिन इसका बीज महंगा आएगा आपका। तो जीरे में क्या है, अगर आप छिटकवा विधि से बुआई करते हैं, लेकिन अगर आप उसी को आजकल गाजर मशीन बोती है, न्यूमेटिक सीडर्स, अगर आप न्यूमेटिक सीडिंग करते हैं, लाइनों में बुआई करते हैं मशीनों से, तो 12-14 किलो बीज लगता है प्रति हेक्टेयर जीरे की बुआई में, वो घटके 7-8 किलो रह जाएगा, कितना जीरा बच गया, 10 लाख हेक्टेयर हमारा एरिया है। तो किसानों को एक तो बुआई का तरीका, फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बीमारी आती है जड़ से आती है, जमीन से लगती है, विल्ट, उखटा रोग बोलते हैं हम इसको, उसकी रोकथाम के लिए एक तो वैरायटी काम कर सकती है, दूसरा सीड ट्रीटमेंट, बीज का उपचार अच्छी फंजीसाइड से बहुत जरूरी है। धनिया में ऐसी वैरायटी है आजकल हमारी जिनमें रोग आते ही नहीं, कई ACR1 अजमेर की हमारी वैरायटी, अजमेर कोरिएंडर 1 डुअल पर्पज है, हरी पत्ती में भी चलेगी और दाने में भी चलेगी। और जहां तक आर्थिक उसकी बात है, निश्चित तौर पर किसान आज जैसलमेर में, बाड़मेर में, जालौर में जीरे की खेती करके, इसबगोल की खेती करके बहुत अच्छे पैसा कमा रहे हैं। और देश आज, मैं जब निदेशक था राष्ट्रीय बीजिया मसाला अनुसंधान जो केंद्र है अजमेर में, जो बीजिया मसाला फसलों पर काम करता, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन पे, 2012 में, तो उस टाइम पे 2012 में जीरे का निर्यात देश से 280 करोड़ के लगभग था। आज जीरे का निर्यात 145 करोड़ को खिलाने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा हम खाने वाले, 5.5 हजार करोड़ से ज्यादा का जीरे का निर्यात है देश से।
1: तो हमारे भारत सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं हमारे किसान भाइयों के लिए चलाई है, और अगर हम बात करें विशेष रूप से मसालों की, तो स्पाइस बोर्ड्स और इसके अलावा MIDH भी एक स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की थी, इन स्कीम्स से किसानों को कितना फायदा पहुंचा है, इन योजनाओं कितना लाभ हमारे किसान भाई उठा पा रहे हैं?
0: देखिए, किसानों के लिए इन योजनाओं का किसान लाभ ले सकते हैं, उसमें अनुदान है, उसमें आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं आप साबुत धनिया ही बेचें, आप धनिया की ग्राइंडिंग करके भी बेच सकते हैं, आप जरूरी नहीं जीरा साबुत बेचें।

0: जीरे को प्रोसेस करके ग्रेड करके जीरे का पाउडर बना के भी आप बेच सकते हैं, एसेल से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जितना भी अनुदान है, MIDH की आपने बात की, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, या स्पाइसेस बोर्ड है, या कालीकट में एक इंस्टीट्यूट और है भारत सरकार का, सुपारी मसाला इंस्टीट्यूट, वो भी मदद करता है किसानों की। बीज को देने की बात करते हैं और किसानों से बीज उत्पादन की बात भी करते हैं। वही पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में किसान आए भागीदारी में और बीज पैदा करें, उसको वापस प्रोक्योरमेंट की बात है, वो भी है। तो हर लिहाज से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मसाला फसलों की अगर आप खेती करते हैं तो आज दक्षिण भारत में भी जितने मसाला फसलें हैं, आपका काली मिर्च है, इलायची है, उनमें भी अच्छी वैरायटीज। सबसे बड़ी बात है बीज एक तो, और एक प्लांटिंग मटेरियल, दोनों का रोग रहित और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और आपने एक और बात की थी आज लाल मिर्च, कभी हमने सोचा था अगर हमारा लाल मिर्च का इतना बड़ा निर्यात होगा, सबसे बड़े तो हम उपभोक्ता है, उसके बाद भी हमारा लाल मिर्च का निर्यात 8,000 करोड़ को पार कर गया था अभी। लेकिन दिक्कतें आती हैं, किसानों को भी ध्यान देना पड़ेगा, इनके निर्यात में दिक्कत आती है कई। एक तो आती है पेस्टिसाइड रेजिड्यू, एक दिक्कत आती है एफ्लाटॉक्सिन वगैरह की।
1: जैसे डॉक्टर साहब बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के जो मानक हैं वो काफी कड़े हैं, हमारे किसान अपनी फसलों को वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से बनाएं?
0: वो भी इसलिए कि आजकल जो आपने MIDH की या मसाला बोर्ड की बात की, आजकल गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ग्लोबल गैप, उनके मापदंडों को अपनाते हुए हम किसानों को भी प्रशिक्षण देते हैं, और उनको जब किसानों को उनके बारे में बताएंगे, भाई देखिए हम निर्यात में है और आपके जीरे में कोई एडल्ट्रेशन होगी, जैसे एनर्जी, अब मान लिया पहली फसल मूंगफली है और आपने बारदाना बोरी कट्टे और थ्रेसिंग फ्लोर्स और मशीन आपने मूंगफली की यूज कर ली, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई है, हमारी पूरी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुई है। उसका कारण रहा पहली फसल, क्योंकि राजकोट जूनागढ़ इन इलाकों में मूंगफली है बड़े पैमाने पर, फिर बाद में जीरा होता है। तो किसानों को हम लगातार बताते हैं भाई कतई नहीं, आप अगर वो भी बारदाना यूज करते हो, आप बोरी कट्टे यूज करते हो, तो उनको उल्टा कर दे, झाड़ दे, धूप में सुखा दे,
1: उसके रेजिड्यूज से
0: वो नहीं आएंगे, उसके जो पार्टिकल है वो नहीं जा पाएंगे। तो इन चीजों का नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं तो खरीदनी चाहिए वैसे, लेकिन सारी सावधानी बरत के गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज अपना के हम किसानों को लगातार ट्रेनिंग भी देते हैं, बताते भी है भाई क्या है अच्छी कृषि क्रियाएं, बेहतर कृषि क्रियाएं क्या है, कौन कौन सी बाधाएं, क्या पेस्टिसाइड रेजिड्यू हमारे जो मेजर बाधक है निर्यात के अंदर, या एलर्जेंट्स है, या आप अडल्ट्रेशन करते हो, या एफ्लाटॉक्सिन, जैसे लाल मिर्च के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एफ्लाटॉक्सिन की, और वो कहां से आता है, सुखाने के दौरान, उसको सुखाते हैं जब तोड़कर, या तो लगातार बारिश होती रही और पौधे पर मिर्ची लगी है वहीं पर फंगस डेवलप हो जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या फिर सुखाने के दौरान ज्यादातर। तो इसका मतलब हमारे थ्रेसिंग फ्लोर या तो पक्के हो या कम से कम हम नीचे पॉलीथीन का यूज करें, हम गीले ग्राउंड पर डालकर अगर उसको सुखाएंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ेगी। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से उनसे निजात पाई जा सकती है और निर्यात में जो बाधक है उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और किसान भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब चलते चलते आप हमारे उन तमाम किसान भाइयों को क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे जो इस साल मसालों की खेती शुरू करने की सोच रहे हैं?
0: देखिए मैं एक ही मूल मंत्र दूंगा कि आप करिए, कम लागत है, कम आपका पानी लगेगा, ज्यादा आमदनी आपको होगी और ये निर्यात योग्य फसलें हैं और वैसे भी देश घरेलू खपत भी बहुत ज्यादा है। और मैं ये नहीं कहूंगा अगर आप सिर्फ पैदा करें, आप उसमें वैल्यू ऐड करें, चाहे मिनिमम वैल्यू ऐड करें, अपना खुद का ब्रांड बनाए, अपने गांव के स्तर पर आपके खेत के स्तर पर वहां आजकल छोटी मशीनरी अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करके आप मसालों की पिसाई या दूसरे प्रोडक्ट्स वहां पर बना सकते हैं जिससे और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, अगर सही तकनीक बाजार की समझ और वैल्यू एडिशन को जोड़ दें तो मसाला फसलें वाकई हमारे किसान भाइयों के लिए सोना साबित हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अजवाइन और सौंफ जैसी मसाला फसलों की खरीफ में बुआई, डॉक्टर बलराज सिंह परियोजना निदेशक मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर से तुषार पराशर की बातचीत।
3: और अब अपने भाइयों को मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं लोकेंद्र से ये उपदेश।

0: रवितारे चांद गगन की और दान करे से धन की शोभा, भजन करे से मन की। बहुत ही सुंदर उपदेश अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों ने सुना लोकेंद्र सिंह की आवाज में, और इस उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार।

0: सभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में हम आपको सुना रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत किशोर कुमार साहब की आवाज में, फिल्म अनोखी अदासी।
1: क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका।

बहुत ही खूबसूरत कव्वाली आप सुन रहे हैं किशोर कुमार साहब की आवाज में। अब तो

दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूँ।

0: ਪਰ ਦੇਖੇ
1: आईआर लाइन न्यूज 24x7 पर आप बने हुए हैं हमारे साथ और सुन रहे हैं गजल कबाली का कार्यक्रम और अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये सुनते हैं फिल्म ओ राजजान को मैं आशा भोसले को

0: और इसी के साथ ये गजल कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। शाम के 7:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने सीएम श्री स्कूल के आधुनिकीकरण के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में आयोजित। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में अभियान चलाया, 2 गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों को आधुनिक और छात्र केंद्रित सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए व्यय वित्त समिति ईएफसी ने लगभग 265 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत स्कूलों में आधुनिक प्रवेश द्वार, स्मार्ट आधारभूत ढांचा, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं और खेल मैदानों का विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और कंप्यूटर लैब तथा मल्टीपर्पज हॉल का उन्नयन भी किया जाएगा। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, टेक्सटाइल पाथ और अन्य दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल विद्यालयों भवनों की मरम्मत कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ, समावेशी और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। परियोजना के सभी कार्य अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने राष्ट्रीय राजधानी में गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में आज एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्र ने कहा कि एनडीएमसी की नवी अनुपम कॉलोनी है।
3: ये नवी कॉलोनी है जो हमें अनुपम कॉलोनी में स्वीकारी देने में हमें अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। नवी कॉलोनी में पहली कॉलोनी जिसने अपना काम सामने रख दिया है कि और किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपोस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है और यहाँ का एक तिनका भी बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे इतना भी कूड़ा निकलता है वो या तो कम्पोस्ट होता है या फिर उसको सेग्रीगेट करके ये जो सामने वाले बिन देख रहे हैं इन सबों में जाता है, जिसको फिर से रिसाइकिल किया जाता है।
1: गोल्फ लिंक कॉलोनी में कचरे का निपटान स्थानीय स्तर पर ही किया जाता है और ये उपलब्धि परिषद और स्थानीय निवासियों के सहयोग से हासिल की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज पूर्वी दिल्ली स्थित संजय झील का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने बताया कि इस दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उन्हें 52 एकड़ में फैले जलाशय और इसके आसपास के 165 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र के पुनर्जीवन के लिए तैयार कार्य योजनाओं की जानकारी दी। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक ढांचा तैयार करने और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि न्यायमूर्ति गाबा समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार ने तकनीकी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कोचिंग संस्थानों के लिए नियम और कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के विषय पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में शामिल हुए। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार

0: राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से आयोजित किया था। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने तेजी से बदलते साइबर खतरे के परिदृश्य के बीच सरकारी डेटा, डिजिटल अवसंरचना और नागरिक सेवाओं की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा की बढ़ती जरूरत पर विशेष जोर दिया।
1: साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार पूरा काम कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सक्सेसिव भी है और दिल्ली सरकार भी इस पर काफी एक्टिव रोल से काम कर रही है। हमारी आईटी डिपार्टमेंट भी जो इंटैक्ट होगी साइबर के जो स्टेटस, साइबर का कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से भी आटक होती है, उससे कैसे अपनी डाटा को सिक्योरिटी में रखा जा सके, उसे सारे कंसर्न टीम आ रखी है।
0: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी जिलाधिकारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आज एक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदूषण हॉटस्पॉट्स की पहचान, धूल प्रदूषण नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने, सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरूद्व कार्रवाई जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 12वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए मूलभूत है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कल तक जारी रहेगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को बाहर रखना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 6 के तहत पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में 80 से ज्यादा जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देशभर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। गिरफ्तार आरोपी फर्जी कंपनियां बनाने और बैंक खाते संचालित करने में शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह मामला श्रेष्ठ प्रोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में दुर्गापुरी एक्सटेंशन से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 600 क्वार्टर शराब की बोतलें और अपराध में इस्तेमाल वाहन को बरामद किया। एक अन्य मामले में पुलिस ने नजफगढ़ क्षेत्र से एक आरोपी को 500 क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद हमें दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान

0: लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां भी उन्होंने पढ़ी।
1: आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिटकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: शीतों में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: संविधान हत्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 25 जून 1975 की वो रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा आघात था। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया और मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना, मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि ये भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रूचि को दर्शाता है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर साल उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। निर्जला एकादशी के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निर्जला एकादशी आस्था, संयम और सेवा का एक पावन पर्व है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम में एमएसएमई प्राइड वॉकथन 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए दिल्ली ने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के सहयोग से किया। कार्यक्रम का विषय गुणवत्ता, नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के लिए साथ साथ चले था। इस अवसर पर आईआईए दिल्ली के अध्यक्ष डॉ ममतामयी प्रियदर्शिनी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तंभ है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर, दिल्ली सरकार ने सीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गोल्फिंग कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। भारत के अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा

पार्टियों की बैठक गुरुग्राम में आयोजित। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू और सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में अभियान चलाया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है रात्रि के 8:15। आइए सुनते हैं गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत से संवारा है जतिन ललित ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं कुमार सानू को, फिल्म का नाम है दिलवाले और इस गीत रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।
1: कमल अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे?
2: कमल अरुण, कमल अरुण यार क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा। अरे ये क्या हुआ, ये तो शम्मा ही बुझ गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया
1: क्या मालूम।
2: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं?
3: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

तोबा ये मतवाली चाल फिल्म पत्थर की सनम में भी आप सुन रहे थे मुकेश को, संगीतकार थे मंसूर सुल्तानपुरी। और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म हम दिल दे चुके सनम में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गीत।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुदरत में। गीत रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत निर्देशन था आरडी वर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और साथी। गीत रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत दिया है रविन्द्र जैन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: शुभ राम तेरी गंगा वैली में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। इसी के साथ ये आज का गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।

0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट टी20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: पार्टनरशिप विद यूके इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन।
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मंत्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
0: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचाव कर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्य में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रूचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
4: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपये और डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9.

आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:17 हो चुके हैं। अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश है आज की इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर में 9:20 पर आप सुनेंगे खुसूसी प्रोग्राम में पैगामे करबला, पेशकश शरीफुल हसन नकवी की है। 9:45 पर खबरें नशर होंगी। 9:55 पर आज आप समाप्त करेंगे मुहर्रम के खुसूसी प्रोग्राम में सोज सलाम मरसिया। 10 आप सुन सकेंगे फीचर, मौजू है तिश्नगी, तहरीर अशरफ आबिदी की है। 10:30 पर आप सुनेंगे मुहर्रम के खुसूसी प्रोग्राम में सोज सलाम मरसिया। 11 परवेज़सगीर से खबरें सुनेंगे। 11:30 पर आप समाप्त करेंगे मुहर्रम का खुसूसी प्रोग्राम मरसिया और नोहा। 11:30 पर आप सुनेंगे सोज सलाम मरसिया और रुबाई। 11:45 पर आप मुहर्रम के खुसूसी प्रोग्राम में सुनेंगे सोज सलाम मरसिया। 12 आप समाप्त कर सकेंगे आलमी खबरें। 12:10 पर आप सुनेंगे सोज सलाम और मरसिया। 12:30 पर आप समाप्त करेंगे सोज सलाम और मरसिया मुहर्रम का खुसूसी प्रोग्राम। 12:50 पर खबरें नशर होंगी और रात 1 हमारी नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में सुनते हैं पैगाम ए करबला, जिसे पेश कर रहे हैं शरीफुल हसन नकवी।
1: कौन तसव्वुर कर सकता था कि करबला, जो अब से तकरीबन 1400 साल कबल एक सुनसान बिहड़ और गैर आबाद इलाका था, एक दिन दुनिया के गोशे गोशे में अपने नाम की गूंज सुनेगा। ये मारका है हुसैन इब्न अली और उनके 72 साथियों का, जिन्होंने हक व इंसाफ के लिए 3 दिन की भूख और प्यास में इस सरजमीन पर हंसते खेलते अपनी जानें कुर्बान कर दी। अभी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा का कफन भी मैला न होने पाया था कि खिलाफत ने मलूकियत का ज्यादा पहन लिया, खिदमत खल्ब के जज्बे को तख्त हुकूमत के हवस में तब्दील कर दिया, तपे को शराबो शबाब की रंगरलियों में बदल दिया गया, दरसे रसूल की सरे आम धज्जियां उड़ाई जाने लगी, यजीद जबरो जबरूत के बल पर अपनी तमाम अखलाकी पस्तियों और बदकारियों के बावजूद तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन हो गया। उसको यकीन था कि इस्लाम के जानिसार उसको एक लम्हे के लिए भी इस हैसियत में पसंद नहीं करेंगे। उसे ये भी मालूम था कि रसूल के खानवादे का इस वक्त भी वो वकार था कि उसके एक इशारे पर यजीद की गैर इस्लामी हुकूमत मुतजलजल हो जाएगी। वो खूब जानता था कि जब तक नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन उसकी बैत न कर लें, उसकी हुकूमत को पायदारी नसीब न होगी। हुकूमत के नशे से सरचार यजीद ने आखिरकार ये इज्तिहादी गलती कर ही ली। हुकाम को हुक्म दिया कि या तो हुसैन की बैत हासिल करो या उनका सर पेश करो। हुसैन बैत तो क्या करते और उसके अम्माल को सर भी क्या पेश करते, बस उन्होंने अपने अज्जा अकरबा और सहाबा का खून करबला के रेगजात पर बहाकर नाना के दीन पर आने वाले धब्बे को हमेशा के लिए धो दिया। 10 मुहर्रम को हुसैन ने वो अजीम कुर्बानी पेश की जिसकी नजीर तारीख आज तक पेश न कर सकी। असहाबे हुसैन ने बारी बाजी यजीद लश्कर को ललकारा, बेराहरवी से तकवे की तरफ आने की दावत दी और हंसी खुशी जंग करके अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। अब बारी आई खानदाने बनी हाशिम की। 18 अईसा में 6 माह का बच्चा अली असगर भी था, 18 साल का जवान बेटा अली अकबर भी था, 32 साल का वफादार भाई अब्बास भी था और 14 साल का भतीजा कासिम भी। इन शहजादों ने जो रजस पढ़े और खुद हुसैन ने लश्कर कुफार को जिस तरह खिताब किया, उससे पत्थरों के दिल तो पिघल गए मगर दौलत और सरवत के नशे में चूर लश्कर यजीदी में हुर के अलावा कोई ऐसा न था जो हक की आवाज पर लब्बैक कहता। क्या ये मायूसी की बात थी? क्या ये नाकामी की निशानदही थी? नहीं, हरगिज नहीं। हुसैन और उनके रफका की ये हक व इंसाफ अखलाक व तक्वा की आवाज आज भी 4 दांगे आलम में गूंज रही है। आज भी बने नोहे इंसान को जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर आमादा कर रही है। आज भी इज्जत नफ्स की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करने का दर्स दे रही है। अगर हम हुसैन की सरजमीन करबला पर दी हुई इस कुर्बानी के पीछे कार फरमा फलसफे फिक्र अमल का तजिया करें तो हमें ये पता चलेगा कि हुसैन कह रहे हैं कि पाक मकसद के हुसूल के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी छूटी है। हुसैन का मकसद खिलाफत का हुसूल न था, हुसैन का मकसद दौलत का हासिल करना न था। वो जाहो सरवत के भूखे न थे, उनका एक और महज एक मकसद था कि अपने नाना के दीन की हिफाजत करें। अगर मकसद की राह में उन्हें जान से हाथ धोना पड़े तो उन्हें मंजूर था। अपनी औलाद कुर्बान करने की जरूरत हो तो वो भी बखुशी उसके लिए राजी थे। अपनी बहनों को नंगे सर पाबर जोला देखना पड़े तो उन्हें गवारा था, मगर इस्लाम पर एक मामूली सा धब्बा भी उन्हें काबिले कबूल न था। हुसैन की इस कुर्बानी का अजीम तरीन दर्स है कि इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। मौत यकीनन बरहक है, सबको आनी है, मगर मौत के लिए यूं तैयारी की जाए जैसे हुसैन ने की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुसैन अपने साथियों के साथ करबला के मैदान में पहुंचते हैं, जमीन के मालिकान को बुलाते हैं,

بیٹے کا غضب ہے انسان.

0: लोगों, हुकूमत वक्त सिर्फ मेरी जान के दर पे है, तुम चले जाओ, तुमसे कोई मजाहिमत नहीं करेगा। हुसैन हर हर मंजिल पर अपने लश्कर की तादाद इस तरह कम करते रहे जैसे कोई जौहरी हीरे को तराश कर उसका जगमगाता जिगर बाहर निकालता है।
1: यही वो यावर अंसार थे जो तीन दिन की भूख और प्यास में सरों की कुर्बानियां पेश करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने को बेचैन नजर आते हैं।
2: वो आशिक सादिक थे, वो थे मोमिन कामिल, दी थी उन्हें खालिक तमीज़े हक़ और बातिल। क्या होश था, क्या फहम थी, क्या अक़ल थी, क्या दिल, क्या हुस्न से तय कर गए वो इश्क की मंज़िल। मेहराब इबादत खमे शमशीर को समझे, ज्यादा वो मुसाफिर दम शमशीर को समझे। दुनिया के न खाह थे न थी ख्वाहिश जलाल, थे दोस्त फकीरों के न थी हुब ज़रूमाल। नए याद वतन थी न उन्हें उल्फत अतफाल, शबीर के आशिक थे ज़हे बख्त खुशहाल। मज़कूर ये था जी से गुजर जाएंगे पहले, और इस बात पे मरते थे कि मर जाएंगे पहले। कहता था कोई आज का मरना है सादत, सरता व कदम खून में भरना है सादत, खंजर के तले हल्क को धरना है सादत, सर से रहे खालिक में गुजरना है सादत। पानी में वो लज्जत न वो खाने में मजा है, जो आज के दिन हल कटाने में मजा है।
0: एक दुनिया सैराब है मगर आले नबी के ख्याम प्यासे बच्चों की आहोजारी से गूंज रही हैं। माएं अपने बच्चों को बहलाकर सुलाने की कोशिश कर रही हैं।
2: करते थे मना जाओ इधर यावर अंसार, पढ़ते थे नमाज़े शबुदर सैयद अब्रार, थी नीयत तस्बीह बुतूले जिगर अफकार, आवाज बुकाओ खेमे से आने लगी अखबार। अकबर से इशारा किया मुड़कर, ये क्या है कि अर्ज थोड़ी जान के रोने की सदा है। यूं तो कई रातों से वह मुस्तर बेताब, राहत की न सूरत है न आराम के असबाब। गश में जो जरा बंद हुए दीदे पुराब, रोती हुई चौंकी है अभी देख के कुछ ख्वाब। नालायन कहीं है चादर पुरनूर कहीं है, उस वक्त से बिस्मिल की तरह चैन नहीं है। उनका तो वह अहवाल है अम्मा का ये आलम, अशकों की घड़ी आंखों से थमती नहीं एकदम। असगर की भी है फिक्र, सखीना का भी है गम, बच्चा छह महीने का हुआ जाता है बेदम। गोदी में उठाएं इसे या उसको संभालें, दो रोज के फाके में वो किस किस को संभालें। रो आती हैं अब किसराने कभी जाकर, गहवारे असगर पे कभी गिरती हैं आकर। कुरान की हवा देती हैं गश में इसे पाकर, बहलाती हैं बेटी को कभी अश्क बहाकर। वो कहती है सुबह यूं ही रोऊंगी अम्मा, अब बाबा ही जब आएंगे तो मैं सोऊंगी अम्मा।
1: इधर इमाम मजलूम अपने जानिसारों को दर से हक दे रहे थे।
2: ये जिक्र अभी था कि जकायक खबर आई, ऐ चांद यदुल्लाह के शब्दों पहर आई, हजरत को सितारों की जो गर्दिश नजर आई, दिल याद खुदा करने लगा चश्म भर आई। फरमाया बड़ा अज्र है बेदारी शब का, अए तिश्न लबो वक्त है ये दावत रब का। अब उम्र भी आखिर है, नमाजें भी है आखिर, बेतोशा पहुंचता नहीं मंजिल पे मुसाफिर। हर वक्त है रब्बे दो जहां हाजिर और नाजिर, अज्र उनके मुजाफ है जो है साबिर और शाकिर। मुश्किल न किसी रंज को समझे न बला को, बंदा वही बंदा है जो भूले न खुदा को। नाम उसका रहे विर्द, सफर हो के हजर हो, मौजूद समझ ले उसे जंगल हो के घर हो। सजदे ही करे दुख में कि राह

अभी आप समाप्त कर रहे थे फीचर, मौजू था तिश्नगी, तहरीर थी अशरफ आबदी की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब समाप्त करते हैं मुहर्रम का खुसूसी प्रोग्राम मसिया।

0: शर्म से मर मर गए, अहले हरम शर्म से मर मर गए, शाह जमन मोमिनो क्या कर गए,
1: शाह जमन मोमिनो क्या कर गए,
0: हो चुके जब कत्ल शाह बहरोबार,
1: हो चुके जब कत्ल शाह बहरोबार,
0: हो चुके जब कत्ल शाह बहरोबार।

अश्क मगर आंखों में भर भर गए, अश्क मगर आंखों में भर भर गए। शाह समन मोमिनो क्या कर गए, शाह समन मोमिनो क्या कर गए। कहने लगी शेख की बहन।

0: साल और करीब आ गया वो खुश के साल और करीब आ गया वो खुश के साल आ गया ज़ैनब को भी उस दम जला।
1: अभी आप समाप्त कर रहे थे मुहर्रम का खसूसी प्रोग्राम मर्सिया, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं खबरें बर्रे सगीर से।
2: ये आकाशवाणी है, खबरें बर्रे सगीर से अब्दुल मालिक के साथ। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहिदा अब तक का सबसे जामع मुआहिदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 तक पहुंच गई है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में तआवुन की पेशकश की है। राम मंदिर अहतियात में खुदवोट के मामले में उत्तर प्रदेश एसआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 1 जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रूपये कर दी गई है। इस तरह तत्काल फीस अब 5,000 रूपये होगी। और भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया जामع इक्तिसादी व तिजारती मुआहिदा सेटा आलमी मईशत को तकवीत देने में अहम रोल अदा करेगा। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF यूके इंडिया वीक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ आजाद तिजारती मुआहिदा FTA भारत की जानिब से अब तक

किए गए वायदों में सबसे जामे वायदा है। जनाब पीयूष गोयल 15 जुलाई से भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तिजारती वायदे के निफाज के लिए दोनों ममालिक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता दोनों मुल्कों को आलमी वैल्यू चेन से मजीद जोड़ेगा और इक्तिसादी तआवुन और तरक्की के नए मौके फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक दफा अहम मादनियात और दीगर कलीदी शोबों में तआवुन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बरतानिया दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी अमन इस्तेकाम और खुशहाली के फरोग की खातिर मुश्तरक अज़्म रखते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन की 48 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सरमाकारी का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जैसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ये सरमाकारी नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये दुनिया भर में भारत में सरमाकारी के लिए बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कास है। मीडिया से बात करते हुए एनडी जैसी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से काफी मुतासिर हैं। उन्होंने भारत की तरक्की के सफर में एक तवील मुद्दती साझेदार बनने का अज़्म जाहिर किया। भारत ने आज ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी की। बिजली की वजारत ने कहा कि इस मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा, नायब वजरा और सरकर्दा अहदेदारों ने एक जगह यकजा होकर तवानाई से मुतालिक कलीदी आलमी चैलेंजों और तवानाई के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के बारे में तबादला ख्याल किया। वजारत ने यह भी बताया कि मीटिंग में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों के 11वें मुश्तरक एलानिये को मंजूरी दी गई, जिसमें तवानाई की यकीनी फरामी, पायदारियत, इख्तरा, लचकदार और मुस्तहकम बुनियादी ढांचा और सलाहियत साजी से मुतालिक शोबों में तआवुन की तौसीख की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा कि तवानाई इक्तिसादी नमो, समाजी तरक्की और इंसानी नशोनुमा के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। दिफा के शोबे में खुद किफालत के समत एक अहम संग मील हासिल करते हुए दिफाई तहकीको तरक्की के इदारे DRDO ने मुल्क में ही तैयार करदा नेत्र कबल अज वक्त फजाई वार्निंग और कंट्रोल AEWNC निजाम के लिए हतमी ऑपरेशनल मंजूरी FOC हासिल कर ली है। FOC सर्टिफिकेट आज बेंगलुरु में मुनाकिदा एक शानदार तकरीब के दौरान भारतीय फजाइया के हवाले किया गया, जिससे मुल्क की फजाई निगरानी और नेटवर्क पर मबनी जंगी सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। इस तकरीब के मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए भारतीय फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने मुल्क में ही तैयार करदा इस निजाम की तारीफ करते हुए कहा कि इसने बालाकोट कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मिशनों में अपनी काबिल एतमाद कारकर्दगी को साबित कर दिया है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की, जिसमें भारतीय रेलवे को मुख्तलिफ अकसाम की अशिया की माल बर्दारी के लिए सबसे पसंदीदा जरिया बनाने के लिए मुजवजा इजलास पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हाल ही में सीमेंट और नमक जैसी अशिया की तरसील के लिए तैयार किए गए खसूसी वैगनों की कामयाबी ने इस अहमियत को वाजा किया है कि वैगनों का डिजाइन सनअत की अमली जरूरियात के मुताबिक होना चाहिए। जनाब वैष्णव ने कहा कि डिजाइन की मंजूरी और इब्तदाई नमूने की तैयारी के लिए सख्त मेयारात अपनाने से भारत में आला तरीन मेयार के वैगनों की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर अतियात में मुबैना खुदबुख से मुतालिक केस के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि 3 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की जानिब से एक शिकायत दर्ज कराने के बाद एक FIR दर्ज की गई।
FIR में कुल 8 अफराद को नामजद किया गया है, हालांकि इनमें कोई बड़ा या नुमाया नाम शामिल नहीं है। 6 मुलजिम मुबैना तौर पर कैशियर बताए जाते हैं। ये कार्रवाई एक खसूसी तहकीकती टीम SIT की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद की गई है। ये छानबीन राम मंदिर को मिले एहतियात के मामले में मुबैना

0: सेना बेजाब्तियों से मुतालिक की गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इनेकाद के दौरान किसी भी ऑपरेशनल कोताही के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी होनी चाहिए। वो आज अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक आला सतही इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें सालाना यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिफाजती और आफात से निपटने के इंतजाम नीज दीगर अहम इकदाम के लिए एक जामे और मजबूत मनसूबाबंदी का तरीकाकार अपनाने पर जोर दिया, ताकि अकीदतमंदों के लिए एक महफूज और यादगार यात्रा को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत ने पासपोर्ट के लिए दरखास्त फीस में इजाफा कर दिया है। अब 36 सफात पर मुश्तमिल नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस 2500 रुपये होगी। पासपोर्ट तरमीमी जवाबी 2026 का इतराक 1 जुलाई से होगा। वजारत खारजा के मुताबिक नई फीस के तहत तत्काल स्कीम के तहत नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद के लिए 5000 रुपये वसूल किए जाएंगे। 60 सफात पर मुश्तमिल आम पासपोर्ट या इसकी तजदीद की फीस 3500 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि तत्काल के तहत इसकी फीस 6000 रुपये होगी। वाजा रहे कि इस वक्त 36 सफात वाले पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये और 60 सफात वाले पासपोर्ट की फीस 2000 रुपये है। अगर 36 सफात वाला पासपोर्ट गुम या खराब हो जाता है तो उसके बदले नया आम पासपोर्ट हासिल करने के लिए 5000 रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह 60 सफात वाले गुमशुदा या खराब पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट हासिल करने की फीस 6000 रुपये होगी। बांग्लादेश में भारत के नए तकरूर करता हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में वाक बंगा भवन में बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपनी सिफारती असनाद पेश करने के बाद बाजाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सदारती महल में असनाद पेश करने की तकरीब के बाद दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में भारतीय वीजा दरखास्त मरकज IVAC का दौरा किया, जहां उन्होंने मरकज के कामकाज का जायजा लिया और हुकाम से मुलाकात की। इस मरकज में वीजा दरखास्त गुजारों की बड़ी तादाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के शहरियों के लिए मामूल की वीजा खिदमात दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सियाती वीजा के लिए दरखास्तें इस माह की 28 तारीख से कबूल की जाएंगी। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने आज कहा कि मुल्क में आने वाले दो ताकतवर जलजलों में 164 अफराद हलाक और 971 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने कहा था कि कल रात 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजलों के बाद कम से कम 32 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। तमाम हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। इस दौरान वेनेजुएला के सदर ने जलजले के बाद भारत की जानिब से इजहार यकजहती की सताइश करते हुए कहा कि ये मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान तआवुन और दोस्ती के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ताजियती पैगाम और इमदादी सरगर्मियों में तआवुन की पेशकश का भी खैर मकदम किया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहिदा अब तक का सबसे जामे मुआहिदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजलों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में तआवुन की पेशकश की है। और भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। इसके साथ ही बड़े सखीर की खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं मुहर्रम के खसूसी प्रोग्राम में मर्सिया।

जब वादा तिसली को वफा कर चुके शबीर, सर मारे काई कर्बो बला कर चुके शबीर, खंजर के तले शुक्र खुदा कर चुके शबीर, उम्मत के लिए हक से दुआ कर चुके।

अब तक पिलाया दिल बेताब का नाला, ऐलान कुने नाराय तकबीर थी ज़ैनब, अनासिराए मकसद शबीर थी ज़ैनब, ऐलान कुने नाराय तकबीर थी ज़ैनब, अनासिराए मकसद शबीर थी ज़ैनब, चादर जो चिमी साकिये को सर को पुकारा, कासिम को सदा दी अली अकबर को पुकारा,

प्यासे, रोती थी कोई बीबी तो देती थी दिलासे, चौकुट्टे न मासूम भी सोए हैं प्यासे। फिर उठे बड़े अज़्म से हैदर की दुलारी, एक चौक जले खेमे के हाथों में उठाई, सुनसान बियाबान पे पहले तो नजर की, फिरने लगे फिर खेमे के चौगिर्द वो बीबी। अल्लाह हर किस्मत बड़ी जी शान थी ज़ैनब, सोए हुए बच्चों की निगेबान थी ज़ैनब। अल्लाह हर किस्मत बड़ी जी

अपना कहे, कह दे उमरे साध से लिल्लाह ही जाकर, कल दिन के उजाले में हम ये लूट ना कहे।

दो जफाकार, सुनता नहीं तो कहती हूँ मैं जो जिगर अफगार, अंजाम ना रुकने कभी अब जान ले जालिम, बेटी हूँ अली की मुझे पहचान ले जालिम।

मुझे फिर भी सितम्बर, क्या खौफ बज़द अपने इरादों पे जो तू है, इन बाजुओं में फातिमा जहरा का लहू है, क्या खौफ बज़द अपने इरादों पे जो तू है, इन बाजुओं में फातिमा जहरा का लहू है, आगे जो बड़ा होगी कयामत अभी बरपा, आवाज मेरी पहुंचेगी ता अर्श मुअल्ला, और सूए नजफ मैंने अगर हाथ उठाया, आ जाएंगे इमदाद को फौरन मेरे बाबा, सर तन पे ना होगा जो जरा बेअदबी की, ज़ैनब है मेरा नाम नवासी हूँ नबी की, सर तन पे ना होगा जो जरा बेअदबी की, ज़ैनब है मेरा नाम नवासी हूँ नबी की, बेटी की सदा सुन के वो असवार पुकारा, ज़ैनब मैं तेरा बाप हूँ पहचान खुदारा, किन आँखों से देखूं ये जिगर सोज नजारा, तू दुख सहे और मुझको आराम गवारा, शब भर में तेरे खेमे का दरबान रहूंगा, का सुबह इसी दश्त में मेहमान रहूंगा, शब भर में

शब्बीर के जब हल्क पे शमशीर चली थी, सच कहती हूँ मैं आप ही को ढूंढ रही थी। शब्बीर के जब हल्क पे शमशीर चली थी, सच कहती हूँ मैं आप ही को ढूंढ रही थी। गिरवाल हुआ शैतान बदन आप न आए, पामाल हुआ इब्ने हसन आप न आए, बेवा हुई एक शब की दुल्हन आप न आए, क्यों लेके बहत्तर का कफन आप न आए। आ जाते तो इस तरह न तकदीर बदलती, यूं प्यासों के हलकों पे शमशीर न चलती। आ जाते तो इस तरह न तकदीर बदलती, यूं प्यासों के हलकों पे शमशीर न चलती। ज़ैनब ने कहा में उस वक्त ये रोकर, मैं साए की मानिंद तेरे साथ था दिल भर, है पेश नजर अब भी कयामत का वो मंजर, जिस वक्त के छीने गए सर से तेरे चादर, मैं बख्शिश उम्मत का सबब देख रहा था, खामोश खड़ा मर्जी रब देख रहा था, मैं बख्शिश उम्मत का सबब देख रहा था।

0: अभी आपसे बात कर रहे थे मरसिया, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं आलमी खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हक्कानी से आलमी खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया आजाद तिजारती मुआहिदा अब तक का सबसे जामे मुआहिदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाह कुन जलजिले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में तआवुन की पेशकश की है। यकुम जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2500 रूपये कर दी गई है। इस तरह तत्काल फीस अब 5000 रूपये होगी। और भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तसादी तिजारती मुआहिदा CETA आलमी मईशत को तकवीत देने में अहम रोल अदा करेगा। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF UK इंडिया वीक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ आजाद तिजारती मुआहिदा FTA भारत की जानिब से अब तक किए गए मुआहिदों में सबसे जामे मुआहिदा है। जनाब पीयूष गोयल 15 जुलाई से भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहिदे के निफाज के लिए दोनों ममालिक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि यह समझौता दोनों मुल्कों को आलमी वैल्यू चेन से मजीद जोड़ेगा और इक्तसादी तआवुन और तरक्की के नए मौके फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक दिफा, अहम मादनियात और दीगर कलीदी शोबों में तआवुन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बरतानिया दहशत

टुकड़े तेरे से बदल हो गया सारा, हाय हाय कौन सा जिसने

कर कहा, रोला मेरे सर की कसम, पास आकर हमें छाती से लगा लो इस दम, दिल से आ

अखबार से देखा अम्मा पर तुम्हें आके अजब हाल से देखा अम्मा गश के आने की कहूँ वजह के क्यों गशाया तीस

भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो के घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 1:10 और 10 सेकेंड। ये वक्त है हमारे कार्यक्रम गीत सुनहरे का।

ऐसी बात फोटो में ऐसी बात है जब आके चली आई खुलता है वही बात जो दुहाई है दुहाई फोटो में ऐसी बात है जब आके चली आई।

Kamehameha, Pakistani, I'm...

बन के कयामत लिखी हर रंग हो तुम्हें हार हो तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली आई भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई हारे हार जिसमें प्यार तो है गहर भी है हाय हो तुम्हें ऐसी बात

0: बरसों बाद ही खेलने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। उस कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हें शौक कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है, वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।
2: श्रोताओ, अब रात्रि को 2 बजने को हैं, ये सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
4: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
5: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
3: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर

0: दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने भूकंप से जानमाल की क्षति पर गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए भारत द्वारा राहत कार्यों में सहायता की तत्परता व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राज्य के उत्तर जिलों में भी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और भूस्खलन हो सकता है। राज्य के उत्तरी उप हिमालयी जिलों में बारिश और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया, झाड़ग्राम में आकाशीय बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said free trade agreement with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth. Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez announced that the death toll from two powerful earthquakes has risen to 188 people, with 1,520 others injured and 200 still trapped. Mr. Rodriguez stated that at least 2,927 families lost their homes after powerful back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes struck around 160 kilometers west of the capital Caracas. The second earthquake was the strongest to hit Venezuela since 1900. He added that 250 buildings, primarily in La Guaira, have been damaged or destroyed. Meanwhile, Venezuela's acting president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. Addressing the nation, Ms. Rodriguez announced the suspension of classes and non-essential activities until further notice. She also activated the public and private health networks in the most affected areas. The Director General of Civil Aviation yesterday said that it was investigating an incident when an Air India plane came in front of an Indigo aircraft on the same taxiway at the Ahmedabad airport yesterday. According to DGCA, after clearing the runway, it was given taxi clearance to proceed to the international apron via taxiway P and taxiway G. The DGCA said that the aircraft continued on taxiway P instead of turning onto taxiway G towards the international apron. The crew immediately stopped the aircraft. It noted that approximately at the same time, an Indigo aircraft operating flight from Ahmedabad to Mumbai was taxiing on the same taxiway for departure. The ministry added that the Indigo aircraft also stopped and both aircraft maintained a safe distance from each other. It noted that the Air India aircraft was later towed to its parking stand. The Ministry of Jal Shakti has extended the timeline for citizen feedback on Jal Sanchay Jan Bhagidari 2.0 portal until the 31st of July. The Ministry

वही आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार।

सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, पैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है।
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन के लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए पश्चिम बंगाल में, हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 137 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। उसने 16 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट पर 139 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हुए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल। कलाकार हैं चंदन दास, इसकी जो गुलकार यानी कि जो गजल रचना की है वो है नुसरत वद्र साहब ने, और जिसकी जो कंपोजर हैं वो है चंदन दास जावेद कुमार, और इसकी जो गीत रचना जो गीत आवाज है जो गजल की जो गायक हैं वो है चंदन दास। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है।

गजल अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे चंदन दास। यहाँ लाइव न्यूज 24/7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत और मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कुछ और गजलें। कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: सिंह की इन्हीं गजलों के साथ में आज का ये गजल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
2: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अब आपके कोने के इशारे पर। कहीं भी हर दम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं जी दुर्गादास और पार्टी से नादास्वरम वादन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जी दुर्गादास और पार्टी से नादास्वरम वादन। इसी के साथ ये कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म अब यही संपन्न होता है। वंदे मातरम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोता आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। उससे थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर बैलेंस, जिसमें आज का विषय रहेगा योग पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। प्रस्तुतकर्ता होंगी योग विशेषज्ञ डॉ हिमानी श्योखन। देशभक्ति गीत का समय रहेगा 5:20 और उससे थोड़ी ही देर बाद यानी कि 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे दीनानंद मिश्र का गायन राग होगा भटियार।

सुबह 7:10 पर संगीत का कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरिदीप सिंह से शबद। गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा जो कि फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होता है सुबह 7:30 और 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे कृष्ण शर्मा का गिटार पर बजाया गया राग चारुकेशी। गांधी चर्चा कार्यक्रम सुबह 9:15 पर होगा जिसमें आज वार्ता का विषय रहेगा खादी और उसके प्रयोग पर महात्मा गांधी के विचार। वार्ताकार होंगी रेणु श्रीवास्तव।

सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, और 10:10 पर फिल्म संगीत होगा आपकी पसंद, 11:10 पर सबरस कार्यक्रम के का प्रसारण होगा, 11:30 पर सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें आप सुनेंगे राजीव वर्मा का सितार पर बजाया गया राग जौनपुरी।

12:10 पर महिला कार्यक्रम होगा एक आंगन एक कदम बुजुर्गों की ओर। ये आकाशवाणी अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजे को है कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।

0: कृपा संतोषूत जत गंडी सतवट देव जेव जी का है तांडे पत ना ए टूटे ना मन लगे ना ए चले ना जाए तन सो मान स्नान का जोग चले पाए चौकन मिलाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पाया वे तगा गया महला पहला
1: लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गाल लख तगिया पहलामिया रात दिन जीना तग कपाहो कपिया बामन वटिया कोई बकरन खाया सबको आके पाए होए पुराना सुतिया पी फिर पाइए होर नानक तग ना टूटे जे तग हो जोर महला।

ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਤਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ।

0: गौ ब्राह्मण का उपला भाव को पटना चाई तो टिका तेज माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा प्रेगते बा संजम तुर्का पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाहे तिरंदा महला पहला
1: मानस खाने कर निवास श्री दुगाय तीन गौता तीन कर ब्राह्मण पूरे नाथ को न फेरावे ओई साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सरम तरम का डेरा दू नानकपुर है पारकूर